0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फालता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का असाधारण कदम उठाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदान में बाधा आई। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनः मतदान हुआ। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब

0: में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा में साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नागरिकों से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और बलिदान को दूर दूर तक साझा करने का भी आग्रह किया। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के बेहद उपयोगी और प्रभावशाली होने की भी कामना की है। रोहित जैन को रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। वे 3 मई 2026 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 854 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, 100.9 मेगाहर्ट्ज ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।

अपना नाम एक तनु बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूं। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं बताते। तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

0: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ। ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਰੂਪਕੋਂ ਕਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ। ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਰਵੀਵਾਸੀਆ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਸਭਾ ਚ ਅੱਜ ਸਿਤਾਰ ਵਾਜਨ ਸੁਣੋਗੇ ਨੀਰਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ। ਰਾਤ 9:15 ਵਜੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਤੇ 9:15 ਵਜੇ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਿਨੇ 3 ਵਜੇ ਸਾਡੇ DTH ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6:55 ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: एयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगालस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे सहायक मतदान केन्द्राणि समेत्य सर्वेषु 85-200 मतदान केन्द्रेषु पुनर्मतदानाय आदेशः प्रदत्तः। आयोगेन उक्तं यत् बुधवासरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे बृहत् संख्यायां मतदान केन्द्रेषु मतदानावधौ नैर्वाचनिकापराधः लोकतांत्रिक प्रक्रियायां विघ्नता च जाता। अस्य मासस्य 21 दिनांके सर्वेषु मतदान केन्द्रेषु प्रातः 7 सायं 6 यावत् नूतन मतदानं भविष्यति। मतगणना मई मासस्य 24 दिनांके भविष्यति। पश्चिमबंगाले दक्षिण 24 परगना जनपदस्य 15 मतदान केन्द्रेषु ह्यः जाते पुनर्मतदाने प्रायः 90% यावत् मतदानं जातम्। द्वयोः विधानसभा क्षेत्रयोः पुनर्मतदानं शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नताङ्गतम्। निर्वाचनायोगेन सम्बद्ध निर्वाचनाधिकारिभिः पर्यवेक्षकैः च प्राप्त प्रतिवेदनानाम् आधारे पुनर्मतदानस्य आदेशः प्रदत्तः आसीत्। पश्चिम बंगाल केरल तमिलनाडु असमेषु केन्द्र शासित प्रदेशे पुडुचेरी इत्यत्र संजातेभ्यः विधानसभा निर्वाचनेभ्यः मतगणना श्वः भविष्यति। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगाल निर्वाचनेषु केवलं केन्द्र प्रशासनस्य कर्मचारिणः मतगणनायाः पर्यवेक्षकरूपेण नियुक्ताः। निर्वाचनायोगस्य अस्मिन् निर्णये भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः हस्तक्षेपं कर्तुं निराकृतवान्। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जॉय मल्या बागची चेत्येतयोः पीठेन निर्देशः दत्तः यत् आयोगस्य दिङ्निर्देशानां पालनं कठोरतया भवेत्। स्नातक चिकित्सा शिक्षायां प्रवेशाय नीट यूजी इति राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अद्य आयोजयिष्यते। परीक्षा मध्याह्ने 2 सायं 5 यावत् प्रचलिष्यति। नीट इत्येतस्य सूचनानुसारेण परीक्षा केन्द्रे प्रवेशानुमतिः मध्याह्ने 1:30 यावदेव भविष्यति। नीट यूजी इत्येतस्य आयोजनं राष्ट्रीय परीक्षण संस्थया स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य शिक्षा मन्त्रालयस्य च अनुमोदनेन स्नातक चिकित्सा शिक्षायां प्रवेशाय 2019 भवति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डॉक्टर आर बालासुब्रह्मण्यम इत्येतस्मै, डॉक्टर जोरम अनिया इत्यस्यै च नीत्यायोगस्य पूर्णकालिक सदस्यत्वेन नियुक्त्यर्थं शुभकामनां प्रदत्तवान्। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदिना उक्तं यत् तयोः समृद्धानुभवः विभिन्न प्रकरणेषु गहनः

0: अवबोधः नीति निर्माणं सुदृढं करिष्यति। असौ विश्वासं प्रकटितवान् यत् तयोः योगदानेन विभिन्न क्षेत्रेषु नवाचारः विकासः च वर्धिष्येत इति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः जमैका सूरीनाम त्रिनिदाद टोबैगो चेत्येतेषाम् आधिकारिक यात्रायै प्रस्थास्यति। एषा यात्रा अस्य मासस्य दशदिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। गिरमिटिया समुदायानाम् उपस्थितेः कारणादेव एतेषां देशानां भारतेन सह विशिष्टः सम्बन्धः अस्ति। विदेशमन्त्रालयेन स्वीये वक्तव्ये उक्तं यत् यात्रावधौ डॉ जयशंकरः त्रिदेशानां नेतृत्वैः सह मेलनं करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां चेन्नईस्थे एमए चिदम्बरम क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन मुंबई इंडियंस दलम अष्टस्तोभि पराजितम। हैदराबादस्य राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रीडांगणे मध्याहने 3:30 सनराइजर्स हैदराबाद दलम कोलकाता नाइट राइडर्स दलम सम्मुखीकरिष्यति। तत्रैव अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलम पंजाब किंग्स दलम सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7 बजे ने हुन पेश ने मुख खबरां। पछमी बंगाल दे 2 विधानसभा हल्कियां विचों 15 वोट केंद्रां ते मुड़ पोलिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पछमी बंगाल विधानसभा चोणां च वोटां दी गिनती लई केंद्र सरकार दे मुलाजमां दी नियुक्ति नूं चुनौती देण लई तृणमूल कांग्रेस दी पार्टीशन विच दखल देण तों इनकार कर दिता है। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने उगे गीतकार लेखक अते संचार माहर परसून जोशी नूं भारत दे लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती दा चेयरमैन नियुक्त कीता है। सरकार ने कहा है कि पछमी एशिया विच चल रहे टकराव दरमियान घरेलू LPG सिलेंडरां दी 100% सप्लाई यकीनी बनाई जा रही है। पंजाब पुलिस दे राज सभा मैंबर संदीप पाठक खिलाफ गैर जमानती धारावां तहत FIR दर्ज कीती। BJP ने इस नूं बदलाखोरी वाली सियासत करार दिता है। बीते दिनी पटियाला नेरे राजपुरा शंभू रेलवे पटड़ी नू बंब नाल उड़ान दे मामले विच पंजवां मुलजम गिरफ्तार। मौसम विभाग वालों पंजाब विच 5 मई तक गरज चमक नाल दरमियानी बारिश ते गेड़े गड़ेमार बारे येलो अते ऑरेंज अलर्ट जारी। BCCI अते ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप 2026 लई भारतीय महिला टीम दा ऐलान कर दिता गया है। हरमनप्रीत कौर टीम दे कप्तान होंगे। ईसन हुण तक दिया मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। प्रोग्राम सोनी सवेर इस दे ले बस कुछ कु पलां दा इंतजार।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी

0: लो जी, प्रोग्राम चल रहा है सोनी सवेर, ते हुन वेला हो गया है एक छोटे जिहे अंतराल दा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

बिल्कुल जी, रल मिलके सारे हसीए। एतवार दी सोहनी सवेर जिहड़ी कहिंदी है हासे दे नाल नाल हासे वाली मस्ती रखो, क्योंकि जिंदगी है इस दे विच्चों टेंशन नूं बाहर कढ़न दे लई हसना बड़ा जरूरी है। ते साडे विच्चों ते कई अजिहे ने जिहड़ा हसना भुल ही गए ने। हाँ देखो देखो देखो, अपने चेहरे ते मुस्कुराहट लिया के कह रहे ने कि मैं ते नहीं हसदा। ते ऐ गुप्ता जी ते ऐ मिसेज श्रीवास्तव ये भी कह रहे ने कि असीं ते इन्ना जिहा ही हस पाने आ। बई मूँह खोल के उच्ची उच्ची भी हसना चाहिए है। योग अभ्यास भी हो जाता है हसण का, ते नाल ही नाल शरीर दे विचों सारी जकड़न जड़ी है वो इस हादसे नाल इस खुशी दे नाल खत्म हो जाती है। ते बिल्कुल हसण दा कोई जड़ा खर्चा नहीं हुंदा, बल्कि हासे वाली फ्री थेरेपी हो जाती है। जदों तुसीं हसदे हो दिल भी खुश हुंदा, दिमाग भी रिलैक्स हुंदा। ते पता है लाफ्टर हसना ही सब तो वड़िया मेडिसिन है। जिंदगी विच कुछ औखा लगे ते जदों लगे कि सब कुछ हथों बाहर हो गया उदों भी हस सकते हैं। तुहानूं पता है जदों स्कूल तो ऑफ हो जाए वो वाली खुशी, जदों काम होमवर्क ना करना पाए वो वाली खुशी, ते जदों कोई तुहानूं अचानक ही ट्रीट दे दे वो वाली मुस्कुराहट। ये मुस्कुराहटा ये हासे ते जदों कोई बच्चा खिल खिला के हसदा होए उसनूं देख के मिलन वाली खुशी। देखो ना, देख के खुशी मिलती है ते फिर हस के मुस्कुराहट के ये खुशियाँ एक दूजे दे नाल वंडन नाल जिंदगी जिहड़ी है ना वो बड़ी ही प्यारी लगन लग जाती है। हसना है लाइफ दा स्वैग, ते टेंशन नूं दे दियो लैग। स्माइल करो, फील द वाइब करो, संडे आ जी, बस एंजॉय करो। सो एंजॉय करो, खुश रहो, हसे मुस्कुराते रहो, ते अपना हासा सारिया नूं सुनाते रहो। फिर गुरदास मान होना दा ये गीत भी गाउंदे रहो।

हंसना नहीं है, पर हाँ किसी ने कोई गल कह के जो दोस्त वो हर्ट ना करे वो वाला हंसना बहुत जरूरी है। आपस विच बैठ के कुछ समा बिताना बड़ा जरूरी है। ते एतवार दा दिन जड़ा हुंदा ना वो यही कहंदा है कि आपस विच बैठ दा वक्त है। सो एक दूजे दे साथ नाल इस समा जड़ा बिताओ, एक दूजे दे हसाउण नाल जिहड़ी खुशी मिलती है वो फिर वक्री हुंदी है। खैर प्रोग्राम चल रहा है जी सोनी सवेर, ते पता है सवेर दा मौसम अज जिहड़ा सी बड़ी तेज़ हवा वाला सी, हुण बौछार बरसात ते अजे ही हालात जिहड़े ने ना अगले कुछ दिन भी रहण वाले ने। पंजाब दे समेत 9 राज्यां दे विच अज 70 किलोमीटर दी रफ्तार दे नाल चलण वाली है हवा, या कह लिए नेरी। पंजाब ते हरियाणा समेत देश के दे कई राज्यां दे विच कुछ दिनां तों बहुत ज़्यादा जिहड़ी गर्मी पै रही सी अज तेज़ हवावां दे नाल पर कुछ हनेरी दे नाल भी उड़ जाएगी। पर इस करके अलर्ट जिहड़े ने वो जारी कर दिते गए ने। हवा की गति जिहड़ी है 50 तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहन का अनुमान लगाया जा सकता है। तो पर जिहड़े कुछ इलाके ने उन्हां दे विच ये हवा होर भी तेज़ हो सकती है, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल। शनिवार पंजाब ते हिमाचल दे विच जिहड़ा मौसम ने अपना रंग दिखाया सी, दोपहर नूं बहुत ज़्यादा जिहड़ी गर्मी सी शाम नूं हुंदे हुंदे हुए थोड़ा जिहा बदलाव आ गया, ते कई जगह ते तेज़ अधखड़ ते हल्की बरसात होण दा भी अंदेशा है। ते नाल ही नाल ये जिहड़ा मौसम थोड़ा जिहा हनेरा छाया होया भी लग सकता है, यानी कि शाम जल्दी आगे लगती है। बठिंडा दे विच वैसे जिहड़ा तापमान सी वो 40.2 डिग्री रहा, ते सब तो गर्म सी। पठानकोट दे विच सब तो घट 19.2 डिग्री। सूबे च 3 दिन तेज़ हवा दे नाल बारिश का अलर्ट जारी कर दिता गया। सो उस हिसाब दे नाल तुसी अपनी सारी दिनचर्या जिहड़ी है उन्हूं रखना ता कि किते कोई दिक्कत जिहड़ी है वह ना आए। तो हाँ रस्तियां दे विच आउंदे जांदे एहतियात वरको, बिल्कुल जी एहतियात वरतो कि कोई भी चीज़ जिहड़ी है वह आके बचे ना, क्योंकि आउंदे जांदे कई पेड़ां दीआं टाहणियां भी जिहड़ियां ने अज सड़कां दे सी। खैर हुण जिहड़ा मौसम है वह तो अपने आप नूं बदल ही रहा है, तो कुछ गीत जिहड़े ने ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜਾਹਟ ਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਜਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਬੀਰ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਈਏ ਫਿਰ।

0: ਹੁਣ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਇਹ ਸੁਹਾਣੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੱਸਣ ਦੀਆਂ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਵਰਲਡ ਲਾਫਟਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਨਿਗਮ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित पार किया। अमरीका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र।
1: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
3: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो। मतगणना कक्षों और EVM स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी। स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जाएगी।

0: परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
1: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, CBS और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर 3 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के LPG टैंकर MT सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन LPG है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मस के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा,

0: सीमा उत्तराखंड विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडे दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 1,50,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है, मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है, करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है, लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ी। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है, खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है, सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार, कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान

0: resolve to eliminate terrorism through decisive action, says Defense Minister Rajnath Singh. Another India-bound LPG tanker safely crosses Strait of Hormuz. United States to pull over 5,000 troops out of Germany. IMD forecasts heavy rainfall over some parts of northeastern and peninsular India. Central plains to witness thunderstorms and lightning today. And Madhya Pradesh pole vaulter Kuldeep Kumar breaks national record at Bhubaneswar. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: नमस्कार ए आकाशवाणी कार्डिनल मैं सरबजीत कौर पहला इस बुलेटिन दिया खास खबर। चोन कमिशन ने पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा हल्के के सारे 285 वोट केंद्रों से इस महीने की 21 तारीख को मुड़ वोटिंग कराने का आदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फैसलाकुन कार्रवाई राही दहशतगर्दी खत्म करने दे सरकार दे दृढ़ इरादे का प्रतीक। भारत आने वाला एक होर एलपीजी टैंकर होरमुज़ पणजोड़ नूं सुरक्षित पार कर गया है। अमरीका जर्मनी तो अपने 5,000 फौजियों वापस बुलाएगा। मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। चोन कमिशन ने पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा हल्के के सहायक वोट केंद्र समेत सारे 285 वोट केंद्र से दोबारा वोटिंग के हुक्म दिए ने। कमिशन ने जिक्र किया है कि बुधवार को फाल्टा विधानसभा हल्के के बड़ी गिनती में वोट केंद्र से वोटिंग दौरान गंभीर चोन अपराध हुए हैं। लोकतंत्री प्रक्रिया च विघन पे है। इस महीने की 21 तारीख को सवेरे 7 बजे तो शाम 6 बजे तक सारे वोट केंद्र से मुड़ वोटा पैणगिया। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में दक्षिणी 24 परगना जिले के 15 वोट केंद्र से कल हुई दोबारा वोटिंग में करीब 90% मतदान दर्ज किया गया। दोवें विधानसभा हल्कों में दोबारा वोटिंग मुख्य तौर पर शांतिपूर्ण रही। संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और निगरानों से प्राप्त खबरों के आधार पर चोन कमिशन दोबारा वोटिंग के हुक्म दिए गए सन। पश्चिम बंगाल केरलम तमिलनाडु असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुई विधानसभा चोणों लिए वोटों की गिनती कल होगी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चोन कमिशन के पश्चिम बंगाल चोणों में सिर्फ केंद्रीय सरकारी मुलाजमान को गिणती सुपरवाइजर नियुक्त करने के फैसले में दाखिल देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जोयमल बागची की बेंच ने निर्देश दिया कि कमिशन के दिशा निर्देशों की सख्ती नाल पालना की जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर नूं फैसलाकुन कार्रवाई राही दहशतगर्दी नूं खत्म करन दे मोदी सरकार दे अटुट इरादे दा प्रतीक दस्सिया है। उन्हें भी कहा कि ऑपरेशन दौरान हथियारबंद बलों की बेमिसाल बहादुरी ने इसनूं भारत के फौजी इतिहास में एक सुनहरी अध्याय वजो दर्ज किया है। श्री सिंह ने कल नवी दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वरेगंढ तो पहला कराए गए शौर्य नाद एक समागम नूं संबोधन करदे कही भारत ने पिछले साल 7 मई नूं 22 अप्रैल नूं पहलगाम दहशतगर्द हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के कंट्रोल वाले खेतरों में दहशतगर्दी ढांचे को निशाना बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज सवेरे जमैका के किंगस्टन पहुंच गए ने। वह जमैका सुरीनाम और त्रिनिदाद के टोबैको के अधिकारित दौरे ते ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने स्वागत जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने किया। विदेश मंत्री ने कहा कि वह अगले 2 दिनों में जमैका के नेतावान व्यापारक आगू और भारतीय प्रवासियों गलबात करने की तांग रखते ने। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 10 मई तक अपनी यात्रा दौरान डॉ जयशंकर तिना देशों के विदेश मंत्रियों नाल मुलाकात करेंगे। विचार वटांदरे विच दवले संबंधा दे सारे पहलुओं के नाल नाल आपसी हित दे खेतरी अते आलमी मुद्दों नूं शामिल किया जाएगा। विदेश मंत्री की यात्रा का उद्देश जमैका सुरीनाम अते त्रिनिदाद ते टोबैको नाल भारत के सियासी संबंधों की गति नूं बनाई रखना अते इन्हां देशों नाल लंबे समय तो चले आ रहे दोस्ताना संबंधों नूं उत्साहित करना है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਐਲਪੀਜੀ ਵਾਹਕ MT ਸਰਵਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ 46,313 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक।

ईसी मसीही भजन। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 9 बजे ने हुण पेश ने

चोन कमीशन ने पश्चिमी बंगाल दे फाल्टा विधान सभा हल्के दे सहायक वोटर केंद्रा समेत सारे 285 पोलिंग स्टेशन से दोबारा वोटिंग दे हुकम दिते ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर नू फैसलाकुन कार्रवाई राही दहशतगर्दी नू खत्म करन दे मोदी सरकार दे अटूट इरादे दा प्रतीक दस्या है। भारत आने वाला एक होर LPG टैंकर होरमुज पंचोल नू सुरक्षित पार कर गया है। अमरीकी जर्मनी तो अपने 5000 फौजियां नू वापस बुलाएगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा मेंबर संदीप पाठक खिलाफ गैर जमानती धाराओं तहत FIR दर्ज की। BJP ने उसनू बदलाखोरी वाली सियासत करार दिता। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने किया है कि पंजाब जेलां ते सुधार सेवावां बिल 226 आधुनिक मनुखी अते सुरक्षित जेल प्रणाली वल महत्वपूर्ण कदम है। बीते दिनी पटियाला नेड़े राजपुर शंभू रेलवे पटरी नूं बंब नाल उड़ान दे मामले विच पंजवां मुलाजम गिरफ्तार। मौसम विभाग वल्लों पंजाब विच 5 मई तक गरज चमक नाल दरमियानी बारिश ते गड़ेमार बारे येलो अते ओरेंज अलर्ट जारी। BCCI अते ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप 226 दे लई भारतीय महिला टीम दा ऐलान कर दिता गया है। हरमनप्रीत कौर टीम दे कप्तान होंगे। मध्य प्रदेश दे पोल वाल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस सन हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सुर साधना शास्त्रीय संगीत दे इस प्रोग्राम दे विच आओ सुनदे हां रत्नाकर व्यास हुणा दा सरोद वादन राग नट भैरव।

0: शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च हुणे तुसी रत्नाकर व्यास होना तो सरोत ते वजाया राग नट भैरव सुन रहे सी। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे साढ़े नौ हुए ने। हुण पेश है साइंस मैगजीन प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान।
1: ज्ञान विज्ञान
2: ज्ञान विज्ञान का यह अंक लैके असी हाजिर हाँ। सारे सुनने वालों नू नमस्कार। अज इस विच रूपक सुनाया जाएगा प्रवासी पंछी। इस अलावा विज्ञान तत्त ते विज्ञान खबरां भी होणगियां। शुरुआत करते हाँ विज्ञान दे इस तत्त नाल। होरमोज जलडमरू धरती ते मनुखा दे होण तो पहला ही बनिया सी। एक समुद्री लांघे की सिरजणा की कहानी जो हुण दुनिया ते राज करती है। आओ जानते हैं इस बारे। अमरीका इजराइल ते ईरान विचकार जंग दे दरमियान होरमोज जलडमरू अज सब तो वध चर्चा दा विषय है। इस नूं होरमोज जलडमरू भी कहा जाता है। दुनिया के सब तो महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों विचों एक मनिया जाता है। ये तंग समुद्री लांघा दुनिया के ऊर्जा व्यापार का 20% लैके जाता है। पर यह समझने लई कि पानी की यह तंग पट्टी अज आधुनिक दुनिया ते किवें राज करती है सानू इतिहास विच डूंघाई नाल जाण दी लोड़ है। होरमोज जलडमरू धरती ते मनुखां दे आउण तों पहला ही बनिया सी। विज्ञानिक अध्ययन दर्शाउंदे ने कि इस जलडमरू की भूमिका लखां साल पहला धरती की परत विच लिखी गई सी। उस समय पहले मनुखां दा जन्म भी नहीं होया सी। धरती दे अध्ययन दर्शाउंदे ने कि फारिश की खाड़ी 6,000 साल पहला मौजूद नहीं सी। उस समय ना तो अरब मौजूद सी ते ना ही ईरान ते ना ही होरमोज जलडमरू उन्हां दे विचकारों लंघदा सी। लखां साल पहला अज दा अरब प्रायद्वीप गोंडवाना नामक विशाल दखनी महाद्वीप का हिस्सा सी। अज ये खेतर अफ्रीका विच बदल गया है। इस उत्तर विच टैथिस महासागर सी जो इस यूरेशिया दे तटां तो वख करता सी। लगभग 130 मिलियन साल पहला गोंडवाना टुटना शुरू हो गया जिस कारण भारती ते अरबी प्लेटा उत्तर वल वधियां। लखां साल तक ये प्लेटा यूरेशियन प्लेट वल वधियां रहियां जिस नाल उन्हां दे विचकार टैथिस सागर संकुचित हो गया। जिवें ही अरब प्रायद्वीप यूरेशिया नाल टकराया धरती दी परत विच चट्टाना टकरां नाल झुक गईयां ते विशाल चोटियां विच बदल गईयां। ए जागरोश पहाड़ सन एक विशाल पहाड़ी लड़ी जो तुर्की तो ईरान ते फिर फारसी खाड़ी तक फैली हुई है। जिवें ही अरब प्रायद्वीप का उत्तरी किनारा वध्या इस दखन वल बेसन डुब गया। ए बाद विच फारसी खाड़ी बन गया। ए पत्थर दे हेठां तेल चट्टान दी एक परत दे हेठां लुकिया होया सी। ए ओही तेल सी जो टैथिस सागर दे दिनां तों चुपचाप बन रहा सी। हुण इस तों बाद जानदे हाँ होरमोज दी उत्पत्ति ते कहानी। जागरोश पहाड़ इस बेसन दी उत्तरी सीमा बनाउंदे ने जदों कि फारसी खाड़ी इस नींह बनाउंदी है। अध्ययन दर्शाउंदे ने कि जागरोश पहाड़ धरती दी परत नूं इक तंग खोखले खेतर विच संकुचित करदे ने। इसे करके खाड़ी सिर्फ 110 मीटर डूंगी ते 340 किलोमीटर चौड़ी है। दखन पूर्वी सिरे ते जिथे ये पहाड़ समुंदर नूं मिलदे ने अरब प्रायद्वीप ते ईरानी तट इन्ने नेड़े आउंदे ने कि उन्हां विचकार दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर है। ते इसे तंग रस्ते नूं होरमोज जलडमरू कहा जाता है जो फारसी खाड़ी नूं खुले समुंदर नाल जोड़ता है। ए तां सन विज्ञानिक तत्त। हुण चलदे हाँ ज्ञान विज्ञान विच अगले सिलसिले वल। आओ सुनदे हाँ प्रवासी पंछी इस एक रूपक।

एक विशाल देश है जो कि कुदरती स्रोतों नाल भरपूर है। इत्थे पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, वड्डियां वड्डियां झीलां, नदियां आदि सब कुछ मौजूद है। भारत का मौसम भी ना ज़्यादा गर्म है ते ना ज़्यादा ठंडा। ये मौसम पशु पंछियों के लिए अति उत्तम है। ते इहो कारण है कि भारत के संघने जंगल, झीलां ते जलगाहां दुनिया भर के पंछियों नूं अपने वल खिंचदे ने। ते दुनिया भर तो कई प्रजातियों के खूबसूरत परिंदे उड़ के भारत विच प्रवास ले आउंदे ने। ते इन्हां पंछियों दियां सैकड़े प्रजातियों के प्रवास का मुख कारण भोजन की तलाश।

0: प्रोग्राम चल रहा जी, हैलो फरमाइश। तो प्रोग्राम दे विच हुन देखते हैं कौन हैलो कहना आए ने। हैलो,
1: हैलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी,
1: मैं राकेश कुमार बोल रहा हूँ, बलेर कोटले तो।
0: जी राकेश कुमार जी, स्वागत है प्रोग्राम विच।
1: धन्यवाद जी, थोड़ा भी स्वागत है जी।
0: वाह जी वाह, तो दस दियो फिर आप जल्दी दे नाल गीत पूछ लिए तो हानू।
1: हाँ जी, फिर भाई धड़क का सवाल है टाइटल सॉन्ग।
0: ठीक है जी, बिल्कुल सुनावांगे। ते पर उस तो पहला असी अंदर हाल भी लेना है।
1: ठीक है, धन्यवाद जी,
0: कॉल करने के लिए शुक्रिया। लो जी, अगला गीत ते सानू दस के नहीं कि इन्हें कहड़ा सुनना है, तो बिल्कुल सुनावांगी। पर उस तो पहला कुछ सुनेहे जिहड़े तुहाड़े तक पहुंचाने ने।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: लो जी, इन्हां सारी सुनिहां तो बाद सुनदे हां दोस्त दा फरमाइश कीता ही गीत।

0: था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आईं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
1: जनादेश 2026।
0: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि आग 4 मंजिला इमारत में लगी।
3: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। श्री संधू ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि घायलों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत तथा सहायता प्रदान की जाए। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज श्रीकाकुलम जिले के सोमपेटा मंडल में मुलापालेम गांव के उदय एक्वा उद्योग का दौरा किया। यहां राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड की परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों के लिए मछली उत्पादन बढ़ाने, आय के स्रोत बढ़ाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने पर विचार विमर्श किया गया। श्री नायडू ने कहा कि श्रीकाकुलम जिले को प्रमुख एक्वा केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन की सिफारिश के बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से पराजित किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुमंती परिवार। ख्याल बाजार पानीपत अंदर रेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य, लाडो गोयल, पापा नानक चंद, शिवाजी कलोनी रोहतक तो पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का ते डुगू भाविक सिक्का, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, गाजीपुर तो प्रतीक रोशनी, प्रांचल, कोटवंद रायपुर, बाबा पट्टी बलिया तो, पिंड इस्लाम वाला, जिला फाजिलका तो सोहन लाल राठी, ओम प्रकाश, शगुन, लवकुश, छत्रपाल, रजिंदर सिंह, खंगवारवा बाबू सिंह, मैने वाला, काका भट्टी, पिंड कमाल वाला तो गुरमेत सिंह विरक ते परिवार। पदमपुर तो भगवान दास तनेजा, पवन कुमार, योगेश तनेजा, आस्था, मोहित, मक्कड़, मुखीराम, मनजीत ते पूजा। पिंड चंदबाजा फरीदकोट तो अंग्रेज सिंह गिरजा, गुरमीत कौर, जगप्रीत, मनप्रीत, करमजीत, चरणजीत कौर, पोती नवकीरत, गुरसीरत कौर, पोता गुरप्रताप ते सारा ही पूर्वा परिवार। जी आर पाल ते पूरा पाल परिवार सराबा नगर जलंधर तो। वड़िंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस, पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा। पिंड कुणियाणा, जिला फाजिलका तो जीत सिंह, दर्शन सिंह, बलकीत सिंह कुणियाणा, दपिंदर सिंह, पोता गुरशबद ते समूह बराड़ परिवार। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, नवनीत, पप्पी भाटिया ते सोनू भाटिया। झज्जर हणे तो बिट्टू, रीटा ते इन्हों का परिवार। तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चंडीगढ़ तो राहुल, रचिता खुराना, केशु ते रिधान खुराना। नेड़े बस स्टैंड बुरज हनुमानगढ़ फाजिलका तो रमन, अमन, दिव्यांश, डॉक्टर मदन लाल वर्मा ते वर्मा परिवार सारा। मेन बाजार शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिंटू सपल, प्रभजोत ते मनजोत। न्यू गुरु रामदास कलोनी गुरदासपुर तो प्रीतम दास, सत्या देवी वानिया, पोतरा अरमान, अविताज का कड्डिया भी कंगुराना ते सारा ही अंगुराना परिवार। बठिंडा रोड मंडी डावले तो रजिंदर, अंजू, मोहित, लकी, तानिया ते परिवार। सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टीडी मल्होत्रा, रितिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल ते बिट्टा बजाज। मेन बाजार शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिंटू, अमनजोत, इंजीनियर रमनजोत ते परिवार। सादुल शहर तो वेदपाल, इंदु, राकेश, शकीला, रोहिणी, अभिनव, सानवी, मीकू, शशि, बिश्नोई, 29 KSD सादुल शहर तो। बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मनीष, राहुल, पिंड डंगल खेड़ा नेड़े फगवाड़ा तो। पिंड वड़िंग खेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहब तो भोला सिंह सिद्धू, पूरा सिंह गहलोत, वकील सिंह, पिंड संतपुरा राजस्थान तो टेक सिंह, पिंड लैपो गहरी तो गुरमीत सिंह, पिंड बजीतपुर भोमा तो बलजीत सिंह ते परिवार। इसे गीत की फरमाइश है, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित ते खुशी गोस्वामी परिवार सारा। कुलवंत सिंह पोतरा, लवराज सिंह औलक, पिंड पोजे के फिरोजपुर तो। सुनते हैं सब की फरमाइश ते गीत, आवाज़ है आसा सिंह मस्ताना होर दी। आओ सुनते हैं इन्हों की आवाज़ विच गीत। प्रोग्राम है तमक जलंधर पैंदी।

0: ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੋ ਥੋੜਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਮਗਰ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ 11:05 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਮਗਰ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੇ ਹੁਣ 12 ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ
1: ਨਮਸਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर होगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।

0: मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सहायक पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
1: जनादेश 2026।
0: संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूल सकेंगे। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
3: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद ये लगातार 3रा महीना होगा जब ओपेक प्लस देश तेल का अधिक उत्पादन करेंगे। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com

0: वहां जी वहां आहिर ने बड़ा खूबसूरत भीम पलासी राग सुनाया है हारमोनियम दे उपर। और प्यारे बच्चियो, भीम पलासी राग काफ़ी ठाठ दा राग है। और प्यारे बच्चे, तुसी सोचते होगे कि ये भीम पलासी ते राग हो गया, ये काफ़ी की है, ये ठाठ की है। तो प्यारे बच्चे, देखो जदों कोई भी चीज़ असी सुनते हैं ना, तो साड़ी उदे प्रति जिज्ञासा जाग जाती है कि ये राग ते असी सुनिया है कि क्लासिकल म्यूजिक दे विच राग गाए जाते हैं, बंदिशां गाईया जांदियां ने, ते ये ठाठ की है। सो प्यारे बच्चे, ये जिहड़ा ठाठ है, इसे तो राग उत्पन्न होंदे ने। और हिंदुस्तानी म्यूजिक दे विच 10 ठाठ मन्ने जांदे ने, जिन्हां तो 4484 राग उत्पन्न होंदे ने। और इन्हां रागां तो अनंत बेअंत जिहड़ियां कंपोजिशनज बनदियां ने। ये जिहड़े राग ने ना प्यारे बच्चे, ये बहुत तरह के माहौल भी दे दिंदे ने। और जे तुसी बहार की कामना करदे हो, तो वह तुहाडे मन नूं बहार वाला फील भी दे सकदे ने। सुरां दे विच, फ्रीकुएंसी दे विच इन्नी ताकत है प्यारे बच्चिओ।
1: जी बिल्कुल। और जदों असीं कुदरत दी गल करदे आ, तां कुदरत वी साडे विच इक इहो जिही ताकत भरदी है कि मौसम दे हिसाब दे नाल साडी बॉडी नूं ढालणा किस तरीके दे नाल असीं सिख सकदे हां, ओह कुदरत सानूं बखूबी समझा दिंदी है। जदों

0: खूबसूरत जी, म्यूजिकल ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है प्यारे बच्चों का। मनपसंद प्रोग्राम चलता पाया जी बाल जगत, और बाल जगत दे विच हुण वेला है नॉलेज टाइम दा। ते लो जी प्यारे बच्चों, कर लो बिरतियां नू एकागर, क्योंकि असी खोलन वाले हाँ तुहाडे लई नॉलेज टाइम दा पटारा। और मई महीने दे विच प्यारे बच्चों केड़े-केड़े खास दिन होण वाले ने उन्हां दा अज जिक्र करांगे, और ओ क्यों खास ने इहदे बारे भी गलबात जरूर करांगे। ते लो जी प्यारे बच्चिओ, सब तो पहला गल करते हाँ 3 मई की, और 3 मई का दिन प्यारे बच्चिओ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे वजों पूरी दुनिया के मनाया जाता है। और प्यारे बच्चिओ, तुसी जानते ही हो कि प्रेस जिहड़ी है वह लोकतंत्र का चौथा खंभा हुंदी है, और इहदी आज़ादी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर आज़ादी अनलिमिटेड कदे भी नहीं हुंदी प्यारे बच्चिओ, उदियां भी लिमिटेशन होंदियां ने, उदियां भी मर्यादावां होंदियां ने। और उसे तरह प्रेस नूं जिथे बहुत सारी आज़ादी है कि वह सरकार दे कम्मां दी देख रेख करदी है अपने उस कलम दे नाल, समाज दे विच की हुंदा पिया है उहदे ते नज़र रखदी है अपने कैमरे दे नाल। और इह सारियां चीज़ां दे विच प्रेस नूं बहुत सारी फ्रीडम भी है, पर कुछ लिमिटेशंस भी ने उहदे।
1: जी बिल्कुल, जदों असीं प्रेस की गल करते हैं तो खबरां साढ़े तक किस तरीके पहुँचदियां ने, चाहे टैलीविजन की गल कर लीए, रेडियो की गल कर लीए, न्यूज़पेपर की गल कर लीए, सारे साधन ने जिसके जरिए साढ़े तक खबरां पहुँचदियां ने। सो इन्हां नूं जिहड़ी फ्रीडम है, जिहड़ियां गाइडलाइनस ने, जरूर तो जरूर फॉलो करते हैं। लेकिन जिंदगी दे विच हसण हसाउण दे लई कहिंदे ने कि कोई भी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सानूं पता होना चाहिए कि हसना ते किसी दे उपर हसना, इन्हां दोनों दे विच किन्ना फर्क है। सो लेकिन खास करके जदों असीं गल करते हैं ना हसण दी, लाफ्टर दी, ते जिंदगी दा एहो जिहा पल हुंदा है जदों असीं हस रहे हुंदे आ अपने दोस्तां मित्रां दे नाल, अपने रिश्तेदारां दे नाल, खास करके जिस दे विच सिर्फ ते सिर्फ खुशी दा प्रगटावा ही नहीं हुंदा, सगों एक सेहतमंद जिंदगी दे लई पहलकदमी दे आधार ते चुक्किया गया कदम भी हुंदा, क्योंकि सुखदीप जी देखिया जा रहा है कि असीं हसना भुल रहे हाँ। जदों असीं अपनी जिंदगी नूं अग्गों लैके जा रहे हुंदे आ ते किते ना किते इस भज दौड़ दे विच इह हासा जिहड़ा है उह घट रिहा है। सो इसे करके ही असीं कहिंदे आ कि इहो जिहे दिन जिहड़े ने जदों मनाए जांदे ने, उस दिन नूं सिर्फ ते सिर्फ उस दिन लई नहीं अपनी जिंदगी लई भी मनाउणा शुरू करिए, कि हुण होर ज़्यादा हसना शुरू करिए दूसरियां उपर नहीं, दूसरियां दे नाल रल के, तां कि इस खुशी दी सांझ पाउंदिआं पाउंदिआं वधिया तरीके असीं अपनी जिंदगी नूं बसर कर सकीए।
0: प्यारे बच्चे, 3 मई का दिन इसे करके वर्ल्ड लाफ्टर डे वजो मनाया जाता है, क्योंकि हासा जिहड़ा है वो साड़ी सेहत दे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हसण दे नाल कहिंदे साडे शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है, और तुसीं अपने आले दुआले पार्कस दे विच जदों योगा करदे लोक हसदे देखे होणगे तां तुहानूं भी बहुत सारा हासा आया होएगा। सो ये हासा तुहाडी सेहत की कुंजी है, और हासे नूं हसण दे लई सानूं थोड़ा थोड़ा अपने आप नूं शांति दे विच भी ले जाना पएगा। और प्यारे बच्चों, अजकल तो बहुत सारे लाफ्टर शोज़ भी चलते ने जिन्हां नूं तुसीं देख के अपने ढिड्डी पीड़ां पा सकते हो। सो प्यारे बच्चों, इस हासे नूं अपने चेहरे का शिंगार बना के रखो, क्योंकि एक जिहड़ी स्माइल है ना ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖਿਓ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਤੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे।
1: असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। इस समय दिन दा 1 बजे आओ सुनदे हां समाचार हिंदी विच दिल्ली केंद्र तों।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
3: जनादेश 2026।
4: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
3: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
4: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
3: जनादेश 2026।
2: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग

0: जाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
1: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 1975 में देश पर इमरजेंसी थोपी गई। कांग्रेस सरकार में संवैधानिक पदों और एजेंसियों के शीर्ष पद पर सीधे सरकार के स्तर से नियुक्ति की जाती थी, जबकि अब ये नियुक्तियां समितियों द्वारा की जाती हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी की हकीकत जानती है और इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। साढ़े अज दे प्रोग्राम ते उहनां दा प्रसारण समा प्रोग्रामां दे वेरवे दे अंतर्गत इस तरह दैनिक वच के 15 मिनट होएगा प्रोग्राम फौजी वेले, बाद दोपहर 2:30 बजे रंगली

अमले को तैनात किया जाएगा, जिन्हें 4,624 माइक्रो मुशाहिदीन का ताआवुन हासिल होगा। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि 234 में से हर एक असेंबली हलके के लिए एक मुशाहिद इस कार्रवाई का निगरानी करेगा और कमीशन की हिदायत पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाएगा। पुदुचेरी में असेंबली चुनाव की गिनती के लिए सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और सिक्योरिटी और निगरानी के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। केरलम में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सीनियर अहलकारों ने केरलम में 140 गिनती मराकज में तैयारियों का हतमी दौर का जायजा लिया। वोटों की गिनती बिला रुकावट

0: सिक्योरिटी और निगरानी के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। केरलम में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सीनियर अहलकारों ने केरलम में 140 गिनती मराकज में तैयारियों का हतमी दौर का जायजा लिया। वोटों की गिनती बिला रुकावट अमल को यकीनी बनाने के लिए गिनती मराकज के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव कमीशन ने जुनूबी 24 परगना जिले फाल्टा असेंबली हलके में वोटिंग के तमाम अमल को मनसूख करने के गैर मामूली इकदाम किए हैं। मुआविन बूथों समेत सभी 285 पोलिंग बूथों में इस माह की 21 तारीख को दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज सुबह विवेक विहार में आग लगने के अफसोसनाक वाकये में हुए जानी नुकसान पर रंजो गम का इजहार किया है। कौमी राजधानी में आग लगने के इस वाकये में 9 अफराद हलाक हुए हैं। मीडिया के अफराद से बातचीत करते हुए फायर ब्रिगेड के अफसर मुकेश वर्मा ने बताया कि आग लगने का वाकया एक 4 मंजिला इमारत के कुछ फ्लोर में पेश आया। उन्होंने कहा कि बचाव और आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान इमारत से 15 अफराद को बचा लिया गया है।
1: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: मगरबी एशिया में जारी लड़ाई के दौरान ओपेक प्लस ममालिक जून में तेल की पैदावार से मुतालिक अपने अहदाफ में इजाफा करने पर उसूली तौर पर रजामंद हो गए हैं। खबरों से मालूम होता है कि 7 ओपेक प्लस मुल्कों ने अगले माह तेल की पैदावार के अहदाफ में तकरीबन 1,88,000 बैरल योमिया तक का इजाफा करने से इत्तेफाक कर लिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात UAE के ओपेक से अलायदा होने और मगरबी एशिया में जारी बहरान के दौरान ये मुसलसल तीसरा माहाना इजाफा किया गया है। UAE के ओपेक ग्रुप से अलग होने के बाद अब ओपेक प्लस में ईरान समेत कुल 21 रुकन ममालिक हैं। पिछले हफ्ते UAE ने ओपेक से अलायदा होने का ऐलान किया था। आज दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन प्रेस की आज़ादी के हक में इकदामात की हौसला अफजाई और फरोग देने के साथ साथ दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी की सूरत हाल का जायजा लेने का मौका फराहम करता है। इस साल प्रेस की आज़ादी के आलमी दिन का मौजू है पुरअमन मुस्तकबिल की तश्कील। इस साल ये दिन इजहार राय की आज़ादी की दोबारा तौसीक करने और सहाफत, टेक्नोलॉजी खुसूसन मसनूई ज़हानत AI और इंसानी हकूक से वाबस्ता इदारों को ऐसे अमली तरीक़ेकार पर यकजा करने का अहम मौका फराहम करता है जिनके जरिए मुस्तकबिल में मालूमाती निज़ाम को मजीद मजबूत बनाया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर और BJP के सीनियर लीडर किरण रिजिजू ने इल्ज़ाम लगाया है कि अपोजिशन की सभी पार्टियां सरकारी एजेंसियों, चुनाव कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया को लगातार तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और वो अब अदलिया को भी निशाना बना रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि इन पार्टियों ने ये नहीं सोचा कि वो मुल्क की जमहूरियत के अहम इदारों को तनकीद का निशाना बना रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के अवाम इन्हें करारा जवाब देंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो उम्र भर याद रखेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में भारतीय तलबा आज दुबई और शारजा के इम्तिहानात के मराकज में नीट UG 2026 कौमी अहलियती और दाखिले के इम्तिहानात दे रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए पेन और पेपर का ये इम्तिहान मुत्तहिदा अरब इमारात के वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक चलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया भर में बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एक्सचेंज के तौर पर उभरा है। ऐसा दरामदशुदा तवानाई हर मुल्क के जबरदस्त इन्हिसार के सबब हुआ है। आसमान को छूती लागत और दरामदात में दरपेश मुश्किलात की वजह से मुल्क की नाजुक बैरूनी हालत नाकाबिले बर्दाश्त दबाव पड़ रहा है। मगरबी एशिया बहरान के दौरान अगर तेल की आलमी कीमतों में इजाफा जारी रहता है तो पाकिस्तान की मुश्किलात से 2-4 मईशत दोहरे हिंदसे के इफरात जर की गिरफ्त में रहेगी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ان بیانات کی مذمت کی ہے جس میں ایرانی جہاز

तो सुन रहे से फिल्म चोरी चोरी दई गीत। मन्ना डे तो लता मंगेशकर दा गाया हुआ। आओ हम सुन रहे हैं प्रोग्राम दा अगला गीत, मुकेश ते लता मंगेशकर नु सुन रहे हैं। फिल्म है आहा।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਚੀ ਮੇਰਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 2:15 ਤੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 1:40 ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1:50 ਉਰਦੂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਜੀ ਵੇਰਾ ਲਈ ਤਹਿਤ। ਦਿਨ 2:15 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਭਾਈ ਕਵੀਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2:30, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਦੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
2: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था।
3: वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने

0: निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। स्मिथ एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कारिकाल, यानम और माहे में होगी।
0: पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
2: सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
3: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। DMK और TVK ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। EVM और VVPAT मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से गणना केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
4: जनादेश 2026।
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
4: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
5: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
6: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश

0: की लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
1: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 1,50,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों।
0: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38,00,000 घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की, उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भी

0: भारतीय मूल के विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमरीका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच अर्ध शहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ ਆਉਸੰਦਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਲਬਾਈ ਕਵੀਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗਾਏ ਹੋਈ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ।
2: ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਾੜਵੀਆਂ ਠੱਗਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਦਸਾਂਨੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਭੋਜਨ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਛਕਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਠਠੰਬਰ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧੂ, ਅਨੋਖਾ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਸਵਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ

तो सुन रहे से प्रसंग भूमिया चोर हरदेव सिंह लाल बाई कविशर ते साथी रौंदी आवाज विच एसी प्रोग्राम रंगली धरती।

हाँ जी दोस्तों, 3 बज चुके ने, 3 बज के 2 मिनट 56 सेकंड हो चुके ने, ते मैं आरजी पूनम सेठी इस वक्त तुहाडे सारिआं दे नाल जुड़ चुकी हाँ। मैं आरजी पूनम सेठी तहे दिल तों तुहाडा सारिआं दा निघा स्वागत करदी हाँ। प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियां मिठियां, ते चिट्ठियां तो मेरे हाथ च ने, एक एक करके सारिआं चिट्ठियां पढ़ांगी ते तुहानूं तुहाडे गीतां दी फरमाइशां भी पूरी करके देवांगी। बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं साडे नाल जुड़ चुके हो, ते हुण पेश करते हैं प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। हाँ जी दोस्तों, पहली चिट्ठी मेरे हाथ च है। चिट्ठी आई है बठिंडा रोड डब्वाली तो राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग ते मोहित नारंग वल्लों। इस तो अलावा चिट्ठी आई है गिद्दड़बाहा तो मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल, बेबी हिना शाह, बेबी कैरवी वल्लों, ते ये फिरोज़ खान की आवाज़ में कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। असी गीत तो लभ लिया है, बहुत ही सोहना जहा गीत है, तुहानू हुणे थोड़ी ही देर च सुनावांगे। कुछ होर चिट्ठियां भी पढ़ लैंदे हां। फिर चिट्ठी आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप ते कालका तो उन्होंने कुछ सज्जन मित्र ने, शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज ते साहिल वालों चिट्ठी आई है। इन्हों तो अलावा चिट्ठी जिन्होंने सानू भेजी है वो आई है ताज मुहम्मद असारी वालों, गुलाम साबिर राही ते महराज जहां वालों सानू चिट्ठी आई है आज़ाद नगर लक्शर हरिद्वार तो। फिर चिट्ठी आई है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन जगमाल सिंह डागला वालों, हैप्पी डागला वालों, GS नायक, शोभा नायक, पूरे डागला परिवार वालों चिट्ठी आई है। जिवें कि मैं तुहानूं पहले ही कहा सी, हुण असीं तुहानूं सुनाउण जा रहे हैं फिरोज़ खान दी आवाज़ विच बहुत ही प्यारा जिहा रूह नूं छू लैण वाला गीत, दिल दा करार। आओ सुनदे हैं गीत फिरोज़ खान दी आवाज़ विच।

हाँ जी दोस्तों, मैं आरजे पूनम सिटी इस वक्त थोड़े ना जुड़ी हुई हाँ। प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियां मिठियां। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़े लोगों का भी कि तुसी साडे रेगुलर श्रोते ने, सानू रेगुलर सुनते हो, रेगुलर चिट्ठियां भेजते हो, तो इदां ही साडे नाल सालां तो सालां कई सालों तो साडे नाल जुड़े हुए हो। हुण आपां हंसराज हंस की एक गीत सुन रहे सी, आ लै छला आ लै मुंदरी। बहुत ही प्यारा गीत सी, थोड़ी जी जानकारी भी थोड़े नाल सांझा करना चाहते हैं। वो एक पंजाब दे मशहूर सूफी ते लोक गायक हैं जिन्हां नूं पद्म श्री ते संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारां नाल सन्मानित किया जा चुका है। मैं गल कर रही हूँ हंस राज हंस दे बारे। जलंधर दे पिंड साफीपुर विच जन्मे उन्होंने छोटी उम्र विच गाउणा शुरू किया ते उस्ताद पूरन शाह कोटी साहिब तो सिख्या लई। वो अपनी मिठी आवाज़ ते सूफियाना अंदाज लई जाने जांदे ने। 9 अप्रैल 1962 विच उन्हां दा जन्म साफीपुर जलंधर पंजाब विच होया। सूफी पंजाबी लोक गीत धार्मिक गीत उन्हां दी गायकी दी शैली है। उस्ताद पूरन शाह कोटी साहिब उन्हां दे गुरु ने ते भारत सरकार वल्लों उन्हां नूं पद्म श्री

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियां मिठियां। मैं आरजी पूनम सिठी इस वक्त इस प्रोग्राम नु पेश कर रही हां। ते हुन अबा कुछ होर चिट्ठियां भी पढ़ांगे, मगर थोड़ी जी जानकारी है इस कंग दे बारे तुहाडे नाल जरूर असी सांझा करना चाहते हैं। इस कंग पूरा नाम अवतार सिंह कंग, एक प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायक हन जिन्हों का जन्म शहीद भगत सिंह नगर नवा शहर के पिंड कुलथम विच होया सी। 1970 के दहाके विच यूके तो अपने करियर की शुरुआत करन वाले कंग पहले यूके आधारित पंजाबी कलाकार सन जिन्होंने एल्बम जारी की। गिद्दियां दी रानी ते आशिक तेरा वर्गे गीतां नाल उन्होंने संगीत जगत विच वड्डा नामना खटिया। उन्होंने कुछ मशहूर एल्बम ते गीत सन जिवें कि गिद्दियां दी रानी, आशिक तेरा, लंबड़ा दी नो नचदी, ऐश करो। 1995 एशियन पॉप अवार्ड्स विच 5 पुरस्कार जीते जिन्हां विच सर्वोत्तम पुरश गायक ते सर्वोत्तम एल्बम शामिल सन। उन्होंने किंग ऑफ बोलियां वजो भी जाने जाता है। एएस कंग ने चरणजीत आहूजा ते केएस नरूला वर्गे मशहूर संगीत निर्देशकां नाल काम कीता ते ओह भारत विच रिकॉर्डिंग करन वाले पहले यूके कलाकार सन। एसी एएस कंग। हुण आपां कुछ होर चिट्ठियां भी पढ़ांगे। चिट्ठी आई है महाराष्ट्र तों, भेजण वाले ने मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र तो भेजन वाले ने अभिजीत ग्वानकर राही, श्रीमती सरिता ग्वानकर, प्रिंस एकांश ग्वानकर, बदलापुर मुंबई तो सिद्धांत ग्वानकर, परिणता ग्वानकर, उन्होंने सज्जन मित्री ने इको चिट्ठी च उन्होंने अपने दोस्तों के नाम भी लिखे ने। अकार हाइट्स बहादुरा नागपुर तो विशैली शैलेश ग्वानकर, श्वेता सुमित ग्वानकर, कुमारी ध्वनि ग्वानकर जिन्हों प्यार नाल परी भी कहिंदे ने, ते लाडला टुक टुक ग्वानकर, बहुत ही प्यारा नाम है परी ते टुक टुक। फिर चिट्ठी आई है मुल्लापुर दाखा मंडी तो बिट्टू जैन, मट्टू जैन, बिट्टी जैन, दीपक जैन, राजा जैन, गौतम जैन, रसगुल्ला जैन, बर्गर जैन, रबड़ी जैन, टीटू जैन, नगीना जैन ते विकी जैन वालों। फिर जिला फाजिलका पिंड कुड़ियाना तो भोला सुवाख, डॉक्टर अमनजीत सिंह, सुखमंदर कौर, अमृतपाल कौर, पोतरी रितमनजोत, पोतरा गुरतेश्वर, अभिजोत गुरताज, दोस्त बलतेज सिंह कुड़ियाना, आर पी सिंह, निहाल खेड़ा, ज्ञान चंद कंबोज अरनीवाला, विछड़ी रू सिकंदर सिंह सुहाग, प्यार परी सत श्री अकाल जी, गीत भी कोई भी सुना दिओ। हाँ जी जरूर सुनावांगे असीं तुहानू। फिर टाली वाला जट्टा तो साहिब सिंह, सुखजीत कौर, बलविंदर, हरजिंदर, गिदड़वाहा तो मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा। फिर चिट्ठी आई है श्री करनपुर राजस्थान तो शिव कुमार सेठी, सुनील सेठी, कमल सेठी, ज्योति सेठी, शब्द सेठी, वानी सेठी ते राजू टुटेजा। इन्होंने आसा सिंह मस्ताना का गीत सुनने की इच्छा रखी है, आपां तुहानू जरूर सुनावांगे। इस गीत तो बाद असी इस चिट्ठी नू जरूर अटेंड करांगे। आसा सिंह मस्ताना के गीत तुहानू जरूर सुनावांगे। फिर चिट्ठी आई है पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो सोहन सिंह बुक, निशान सिंह बुक,

कौर, कीरत कौर, अमर लाल, दादी जसवंत कौर, बलविंदर कौर बूख, सुरिंदर कौर बूख, राज सिंह मिस्री, पिंड माहुआना, बोदला टानी, नेड़े अरनी वाला, अमर लाल। फिर गिद्दड़ बाहा तो मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल ते बेबी हिनाशा वालों। अच्छा, एक चिट्ठी जी आई है मखू फिरोजपुर तो, बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज, ए हुसन जवानी मालो माल जड़ा गीत है हरभजन मान दी आवाज़ में सुनना चाहते हैं। आपां तुहानूं ये गीत जरूर सुनावांगे, आओ सुनते हैं गीत।

हाँ जी दोस्तों, मैं आरजे पूनम सेठी इस वक्त इस प्रोग्राम में पेश कर रही हूँ। प्रोग्राम का नाम है चिट्ठियाँ मिठियाँ। सिर्फ 10 मिनट रह चुके हैं, 10 मिनट से कुछ सेकेंड, तो प्रोग्राम में असं हजे भी अगे वधा रहे हैं। हमने आप आसा सिंह मस्ताने की आवाज़ में गीत सुने से इधर कनका उधर कनका, बहुत ही दिल नू छू लैन वाला गीत सी। आसा सिंह मस्ताना के बारे कुछ जानकारी थोड़े नाल साझा कर लेंगे। पंजाबी लोक गायकी दे बहुत ही मशहूर ते सत्कारत थम सन। उन्हां दी मिठी ते दमदार आवाज़ ने पंजाबी संगीत नू विश्व पद्धर ते पछाण दिवाई। आसा सिंह मस्ताना, उन्हां दा जन्म 22 अगस्त 1927 नू पिंड शेखूपुरा, जो कि हुण पाकिस्तान विच है, माता अमृत कौर ते पिता सरदार प्रीतम सिंह दे घर होया सी। देश दी वंड तों बाद उन्हां दा परिवार दिल्ली आके वस गया। उत्थे उन्हां ने उस्ताद पंडित दुर्गा प्रसाद जी तों संगीत दी विद्या लई। मस्ताना जी ने कई अजिहे गीत गाए जो अज भी घर घर सुने जाते हैं। उन्होंने कुछ बहुत ही मशहूर गीत सन काली तेरी गुट ते परांदा तेरा नाल तेरा लाल, बल्ले ने पंजाब दिए शेर बचिए, डोली चढ़दियाँ मारियाँ हीर चीकां, जुगनी ते वारी शादी हीर। उन्हां दी सुरिंदर कौर नाल जोड़ी बहुत ही प्रसिद्ध सी। उन्होंने प्रकाश कौर ते पुष्पा हंस नाल भी कई यादगारी दो गाने गाए। संगीत दे खेतर विच उन्होंने वडमुले योगदान लई भारत सरकार ने उन्होंने 1985 विच पद्मश्री नाल सन्मानित किया। इस तो इलावा उन्होंने संगीत नाटक अकैडमी अवार्ड ते पंजाब सरकार वालों स्टेट अवार्ड भी मिलिया। गायकी दे नाल नाल ओ दिल्ली दे चांदनी चौंक विच एक सरकारी बैंक विच नौकरी भी करते सन। बहुमुखी प्रतिभा दे धनी सी आसा सिंह मस्ताना। तो हुण आपां कुछ होर चिट्ठियां भी पढ़ लैंदे हां। चिट्ठी आई है श्री फतेहगढ़ साहिब तो, भेजन वाले ने रामनाथ अतापुरी, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर। तो किसी भी गीत नू सुनने की इच्छा इन्होंने रखी है। फिर पिंड चतरा तहसील जीरा जिला फिरोजपुर तो जगजीत सिंह चतरा, प्रेम भूषण गुप्ता, टहल सिंह, गुरसेवक सिंह, अजीत सिंह सहोता, जीत सिंह पैच, हरनेक सिंह, बूटा सिंह ते लिखारी सभा वालों, ये लिखारी सभा के मैंबर ने ते उन्हां सारिआं वल्लों इन्हां ने चिट्ठी लिखी है। फिर पिंड कुड़ियाणा कुलदीप टिंगड़ा, विशाल टिंगड़ा, सुमित टिंगड़ा, सोहन लाल राठी, इस्लाम वाला कविता, ते मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, लिखाई मैनू नहीं समझ आ रही है। फिर गिद्दड़बाहा तो मनजीत सिंह तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल हिनाशा वालों चिट्ठी आई है। ये बलकार सिद्धू की आवाज़ में कसम खुदा दी गीत सुनना चाहते हैं। असं ये गीत सिलेक्ट कर लिया, थोड़ी ही देर से तुहानू ये गीत जरूर सुनावांगे। फिर मॉडल टाउन करनाल तो सुधीर नूतन, संदीप गिगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, ईशा प्रीत शर्मा, बिपाशा शर्मा, किरण ठाकुर वालों चिट्ठी आई है। फिर चिट्ठी आई है पिंड कैरो जिला तरन तारण पंजाब तो गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शमी, रजनी आकाश ते पनहत ते पोत्रा गुरशबद। फिर पटेल नगर मलोड पंजाब तो रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, बेबी आरजू जजोरिया वालों चिट्ठी आई है। फिर साढ़े बहुत ही चर्चित, मैं कहांगी बहुत ही चर्चित साढ़े स्रोते चकला बाजार समाना तो पप्पू राजा खुशदिल, हसमुख जिंदल, संगीता जिंदल। जिमें कि मैं तुहानू कहा सी आपां गिद्दड़बाहा तो जिहड़ी फरमाइश आई सी मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल ते बेबी हिनाशा वालों, बलकार सिद्धू की आवाज़ में आपां अगला गीत सुनांगे कसम खुदा दी। आओ सुनदे हां गीत।

जी दोस्तों, गीत आपां सुन रहे सी बलकार सिद्धू दी आवाज़ विच। बलकार सिद्धू पंजाब दा एक मशहूर पंजाबी गायक, अदाकार ते राजनेता ने। उन्हां ने बठिंडा दे पिंड पुल्लां तों हो के संगीतक सफर विच गोल्ड मैडल जीते ते माझे दिए मोमबत्तीए वर्गे हिट गीत दिते। 10 अक्तूबर पिंड पुल्ला, जिला बठिंडा, पंजाब विच उन्हां दा 1973 जां 1975 विच उन्हां दा जन्म होया सी, ये हजे क्लीयर नहीं है। पिता रूप सिंह सिद्धू ते माता चरणजीत कौर दे घर उन्हां दा जन्म होया सी। यूनिवर्सिटी विच गौन विच 3 वार गोल्ड मैडल जेतू सन। अपने चाचे प्रसिद्ध डाडी गुरबख्श सिंह अलबेला तों संगीत सिख्या। बलकार सिद्धू ने कई पंजाबी प्रसिद्ध गीत गाए ने, जिमें कि माझे दिए मोमबत्तीए, दौलतां, गोरा गोरा मुखड़ा, पिंड दी रौनक, करन छड दे प्यार। ये सी उन्हां दे कुछ प्रसिद्धियां। ते बलकार सिंह सिद्धू ने पंजाबी फिल्म देसी मुंडे विच भी काम कीता सी। ते हुण कुछ चिट्ठियां भी पढ़ लैंदे हां। चिट्ठियां पढ़न दा टाइम तां वैसे हुण चला गया है। मलोड़ तो जगतार गिल, परमजीत कौर गिल, गैवी गिल, अमन गिल, बुढ़ सिद्धवा मलोड़ तो सरबजोत सिद्धू, अविताज सिद्धू ते जगतार जग्गा धौला खिंगरा तों, महेसगेट नाभा तों सोमदत्त कैरव, ज्योति राणी गुरमानत महेसगेट नाभा तों। बस आ सी चिट्ठियां अज दियां। ते हुण आपां आखरी गीत सुनदे हां चांदी राम ते शांति देवी दी आवाज़ विच, चिट्टे कुर्ते ते फुल।

जी दोस्तों, मैं आरजे पूनम सिटी इस वक्त थोड़े नाल इस प्रोग्राम नू पेश कर रही सी। बहुत बहुत शुक्रिया तुसी मेरे नाल इस की इस प्रोग्राम च जुड़े हुए सी। उम्मीद करांगे कि आपां अग्गे भी इदां ही इस प्रोग्राम राही जुड़े रहांगे। ते हुण मैं तुहानूं अगले रविवार या किसी होर अगले रविवार जरूर मिलांगी आरजे पूनम सिटी नू तुहाडे सारयां वल्लों। आरजे पूनम वल्लों तुहानूं सारयां नू नमस्कार, सत श्री अकाल।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3

0: छत्ती। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नूं किसी सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इनक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी दिंदा है, जिस दे डर नाल ओह किसी तों वी इनक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नूं गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसी तरह दी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगता। अपना पर्सनल डाटा देने तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लवो। सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए है जलंधर केंद्र। इस समय शाम दे 4:30 होए ने। हुण असीं तुहानूं श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलदे हां, जिथों तुसीं शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे।

दातार अपना नाम देह गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह। ए फरमान साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी वल्लों उचारित है। पंचम गुरदेव अकाल पुरख के चरणों विच बेनती करते ने कि हे दातार प्रभु मैनू अपने नाम की दात बख्शो, मेरे ते किरपा करो कि मैनू आप जी का नाम कदे ना विसरे। मेरे मन विच यही उमंग है, यही चाह है कि मैं आप जी दे गुण गायन करदा रवां। बेशक प्रभु दे गुण बयान नहीं कीते जा सकते, उस दे गुण गायन भी नहीं कीते जा सकते, पर अकाल पुरख जेकर आप किरपा करे तां इह संभव हो सकता है। क्या गुण तेरे सार संभाली मोह निर्गुण के दातारे, बै खरीद क्या करे चतुराई ए जियो पिंड सब थारे। सरवण करदे हां भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

क्या गुण तेरे सार संभाली, मोहे निर्गुण के दातारे, बै खरीद क्या करे चतुराई, ए जियो पिंड सब थारे। आप जी सरवण कर रहे सो भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द। प्रभु प्यारे जन गुरमुख जन उस परवरदिगार दी भगती विच लीन रहिंदे हन, सदा उस दी उस्तत करदे रहिंदे हन, ओ खुद उस्तत अते निंदा तों उपर हुंदे ने। ते जे कोई ऐसे भले पुरशां दी निंदिया भी करदा है तां भी वो अपना गुण गायन करन वाला सुभा त्याग दे नहीं। हरजन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हरजन की अपना गुण न गवावै। सरवण करदे हां डॉक्टर गुरनाम सिंह होरां वल्लों गाया होया ये शब्द।

0: हरजन राम नाम गुन गावे, जे कोई निंद करे हरजन की अपना गुन ना गवावे। इस शब्द का गायन कीता सी डॉक्टर गुरनाम सिंह होरा ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बलवंत सिंह।
1: बैराड़ी महला चौथा। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। रहाओ जो किश करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे। हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुलावे। हर आपे पंच तत् विस्थारा, विच धातु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावे। ए पावन पवित्र शब्द सोडी सुल्तान सतगुरु श्री गुरु रामदास साहब जी दी पवित्र रसना तो उचारण कीता होया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पवित्र अंग 719 उपर सवाए मान है। बैराड़ी राग दा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर 13वां स्थान है। इस शब्द दियां रहाओ वालियां पंक्तियां विच सतगुरु बख्शिश करदे हन। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। परमात्मा दा भगत सदा गुण गांदा रहिंदा है। जां इंज कहा जा सकदा है कि स्वामी दा गुलाम स्वामी दी महिमा गायन करदा रहिंदा है। जे कोई मनुख उस भगत दी निंदिया भी करदा है तां ओ भगत अपना गुण गवाउण वाला

अत्यंत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूरब करम लिखे गुण गाओ। आप जी सरवण कर रहे सो पाई दर्शन सिंह कोमल ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा तथा निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकल, यानम और माहे में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी आई को दृष्टि मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके जुनून का प्रमाण है। उन्होंने गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई दी है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के शाहदरा स्थित विवेक विहार इलाके में हुए अग्निकांड में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराता है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को एक नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। हुणे तुसीं सरवण कर रहे सी प्रोग्राम गुरबाणी विचार। शाम दे 6 वज रहे ने हुण तो थोड़ी देर बाद साढ़े दिल्ली केंद्र तो पेश कीतियां जाणगियां हिंदी समाचार।

0: ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 166 रन का लक्ष्य दिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar.
2: FMN 100.6 MHz ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जी

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नूं किसे सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इंक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी देंदा है, जिस दे डर नाल ओ किसे तों वी इंक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नूं गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसे तरह दी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगता। अपना पर्सनल डाटा देने तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो। सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।

0: 8:30 होएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, DRM 864 किलो हर्ट्स, FM 100.8 मेगा हर्ट्स, FM 100.9 मेगा हर्ट्स से ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। पेश है प्रोग्राम वक्ते पानी।
2: चौथा है जी तिया तिया मोह तो सखने घर च ममता दे चिराग बालन जांदियां, रिश्तियां नू ताजे अर्थ दिंदियां, सुने घरां दी उदासी च नवियां किलकारियां दी आस धरदियां। धियां इक्को वेले सहुरियां दे घर च अते मापियां दे दिल च रहिंदियां। धियां किते नहीं जांदियां, धियां जांदियां नवें सुपने सिरजण, नवें दिस हद्दे गाउण, नवें घर दे नक्श घड़न, नवें रिश्तियां नू पहचान देन, नवियां चुनौतियां दे सन्मुख होण। धियां चावां दे चिराग लै परत आउण लई जांदियां, धियां चावां दे चिराग लै परत आउण लई जांदियां। धियां जांदियां तां घर कोल इक उड़ीक हुंदी, धियां जांदियां तां घर कोल इक उड़ीक हुंदी, धियां आउंदियां तां घर इक होर उड़ीक लई तैयार हुंदा। धियां बिरद हो के भी पेके घर दी बीबी रहिंदियां, धियां पेके घर दी हर नुक्कर नूं जाणदियां, घर दी गुरबत दे हर नक्श नूं पहचाणदियां, कदी भी प्राउणियां ना हुंदियां। पेके घर आ के सब तों पहलां चौंके नाल संवाद रचाउंदियां, झाड़ू नूं निहारदियां, वेहड़े नूं संवारदियां। धियां दे दुख दे बवंडर विच भी तियां दुख दे बवंडर विच भी पेके घर दी सुख मंगदियां, तियां भरावां चों बाप दे नक्श तलाशदियां, भरजाइयां दे निग चों पेका घर सियाणदियां, बचपन दे नां नाल जाणियां जांदियां, हर उम्र च तियां पेका घर माणदियां। जो मेरी कविता जिहियां ना हुंदियां उह कुछ होर हुंदियां, तियां ना रहिंदियां। तियां तां हुंदियां वालियां चूड़ियां परांदियां, हर वेले साडे अंग संग रहिंदियां, दोस्तो तियां किते नहीं जांदियां। दूजी कविता है जी चिड़िए। प्यारीए चिड़िए की रहण आई है घर मेरे, इत्थे कोई ना कोना तनहा, ना कोई भीड़ा ओट आसरा, जिथे टिक जाण तीले निक्के। मैं शायर कवितावां विच तूं रह सकनी है पर बह नहीं सकती, किताबां भी नहीं पढ़ना आलना तेरा। कच्चियां कंधां शतीर ते बाले, कंधां विच मगोरे कख कानियां दियां छत्तां अंदर, तेरे घर दे रहण बसेरे तैनूं तंग करदे, नाल खेडदे बच्चे मेरे, घर नूं घर दी रौनक दिंदे, ठंड ते निग नाल सी भर दे, हुण किथे गए ना पुछ साथों प्यारीए चिड़िए। अगली कविता है जी कूड़ा। सुन्नी गली चों कूड़ा चुकन वाले दी सुरीली आवाज़ कन्नी पई है, सुन्नी गली चों कूड़ा चुकन वाले दी सुरीली आवाज़ कन्नी पई है, मैं चाहुंदा हाँ ये आवाज़ हर कान च पवे, मैं चाहुंदा हाँ ये आवाज़ हर कान च पवे, ये आवाज़ कुछ उन्हां चोणवियां बचियां पवित्र आवाज़ां चों है, जिस विच आस है किरत नूं समर्पित सदीवी आस। ये कूड़ा खिलार दी नहीं, कूड़ा सांभ दी आवाज़ है, कन्ना ते हथ ना धरो इस आवाज़ नूं सुनो। अगली कविता है जी थेहां दे नक्श। पहलां चिट्ठी पाउणी महीनिया बद्धी जवाब उड़ीकना, लिख तुम आगे मिले पढ़कर हाल मालूम हुआ, खत दे स्थाई अंश होंदे। हुण एक क्लिक नाल पहुँच जांदी चिट्ठी, हुण एक क्लिक नाल पहुँच जांदी चिट्ठी, क्लिक नाल जवाब परत आउंदा, क्लिक जिन्ना हाल जाणदे एक दूजे दा, मन द्रवित ना हुंदा, चेतियां च कोई छिण

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजय ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ ते FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। शाम दे 8 बजे ने पेश है प्रोग्राम तुहाडी चिट्ठी मिली।
3: मैं सोहन कुमार हाजिर
5: ते मैं प्रभजोत भी हाजिर जी। नमस्कार।
3: नमस्कार मैडम, तुहानू भी बहुत-बहुत नमस्कार ते साडे सारे श्रोतियां नू भी प्यार भरी नमस्कार जी।
5: नमस्कार जी, तुहानू भी ते सुनाओ की हाल चाल ने।
3: बहुत वधिया मैडम, अज दिन बड़ा शुभ है।
5: अच्छा जी,
3: जी
5: किद्दां?
3: अज है
5: मेडे ते एक होर दिन भी है।
3: एक होर दिन भी है
5: ते अज हैगा बुद्ध पूर्णिमा।
3: बुद्ध पूर्णिमा दा त्यौहार अज मनाया जा रहा है।
5: बिल्कुल।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखिरी तारीख 20 मई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया।

0: उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
4: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
5: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में

0: जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में दो दो केंद्र तथा नौगांव में तीन केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6000 काउंटिंग कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
3: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत, हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: IIT मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक एपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
3: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के

ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वो होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।

0: समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वो हॉर्मोन्स जल डमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. All set for counting of votes tomorrow for West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry assembly elections. Robust security arrangements in place for smooth counting. Indian space startup Galaxy launches Mission Drishti, world's first Optosar satellite aboard SpaceX's Falcon 9 rocket. Vice President and Prime Minister hail the feat. UAE resumes normal flight operations to the multiple destinations in India after brief suspension amid West Asia conflict. IMD issues orange alert for heavy rainfall along with thunderstorms and gusty winds over several parts of North India tomorrow. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat host Sunrisers Hyderabad by 7 wickets. Gujarat Titans face

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में दूसरा रूपक साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति आकाशवाणी। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति आकाशवाणी।
1: समय की तरंगों पर तैरती एक ऐसी आवाज जिसने 9 दशकों तक भारत के हृदय की धड़कन को शब्द दिए हैं। आज जब आकाशवाणी अपनी यात्रा के 90 वर्ष पूरे कर रहा है तो हम लौट रहे हैं उस विरासत की ओर जहां स्वर और शब्द मिलकर राष्ट्र की चेतना जगाते थे।
2: ये आकाशवाणी है।
1: ये शब्द सिर्फ एक सूचना नहीं, एक संस्कृति की धड़कन है।

0: जब किताबें कुछ ही लोगों की मेज तक सीमित थी, तो इस आवाज ने बंद दरवाजों को खोलकर साहित्य और संस्कृति को आम आदमी के चूल्हे चौके और बैठक तक पहुंचाया।
1: एक ऐसा मंच जहां शब्द पन्नों की कैद से आजाद होकर सीधे हिंदुस्तान के दिल में उतर गए। 90 साल और एक अटूट रिश्ता, ये कहानी है आकाशवाणी और भारतीय साहित्य के साथ संस्कृति के उस मिलन की जिसने भारत की सोच को गढ़ा।
2: साहित्यकार जो देना चाहता है वो अनेक आगत युगों तक रहेगा और उसकी रचना कालजयी हो सकती, समय की सीमा को पार करती है। साहित्यकार को जीवित रखने के लिए उसके सृजनात्मक शक्ति को अक्षय रखना होगा।
0: यह आवाज थी कवयित्री महादेवी वर्मा की। 50 और 60 के दशक में आकाशवाणी के गलियारे भारत के साहित्यिक संसद जैसे थे। यहाँ निराला अपनी गूंजती आवाज में कविता पढ़ते थे, तो बच्चन अपनी मधुशाला की रूह उतारते थे।

0: ये थी हरिवंश राय बच्चन के स्वर में उनकी कृति मधुशाला की कुछ पंक्तियां।
1: पद्मश्री से सम्मानित हिंदी पत्रकार और लेखक विजय दत्त श्रीधर का मानना है कि साहित्यकारों को मंच प्रदान करने के साथ साथ भाषा और विषयों के चयन को लेकर आकाशवाणी ने अपनी अनूठी पहचान दशकों से कायम रखी है।
2: आकाशवाणी का भारत के जनजीवन में लोक प्रसारक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है और उसका महत्व जब अकेला प्रिंट मीडिया था सामने तब भी बरकरार था, टेलीविजन मीडिया आया तब भी बरकरार रहा, अब सोशल मीडिया और निजी चैनलों की बाढ़ आ गई है तब भी आकाशवाणी का महत्व बरकरार है और इसका कारण है उसकी विश्वसनीयता, उसकी भाषा में, प्रस्तुति में, विषयों के चयन में संयम है, एक सुसंस्कृति है। फिर आकाशवाणी ने कई बहुत अद्भुत काम किए, पहले किसानों की, विज्ञान संबंधी, युवाओं के लिए कितनी सारी जानकारियाँ ये नियमित रूप से आकाशवाणी समाज तक पहुँचाता रहा है।
0: कई साहित्यकारों के लिए आकाशवाणी एक संस्कार रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखिका ममता कालिया अपनी यादों को साझा करते हुए कहती हैं,
3: मुझे सन 50 का जमाना याद आ रहा है जब मैं 9 साल की थी। मेरे पिता ने तब आकाशवाणी ज्वाइन किया। मेरे पिता का नाम था श्री विद्या भूषण अग्रवाल और मेरे चाचा भी रेडियो में थे, उनका नाम था श्री भारत भूषण अग्रवाल और विख्यात कवि थे वो। और मेरी साहित्य की यात्रा में रेडियो ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और देखो, रेडियो कहता था इस बार कविताएं ब्रॉडकास्ट करेंगे, आप कविताएं लिख के लाइए, तो रेडियो की वजह से मैंने 10-10 कविताएं लिख दी। मेरी भाषा में जो आज सरलता है जिसके कारण शायद लोग पढ़ लेते हैं मुझे, मुझे याद है कि बचपन में जैनेन्द्र कुमार तक ऐसे थे कि वो अपनी कहानी लिख के पापा को दिखाते थे कि देख लो रेडियो के लायक है कि नहीं, इसमें कोई कठिन शब्द तो नहीं है। पापा हमेशा कहा करते थे कि भाई रेडियो की भाषा सरल भाषा होनी चाहिए। विष्णु प्रभाकर के नाटक देखिए, रेडियो से ही वो इतने विख्यात साहित्यकार बने क्योंकि रेडियो में जो था कि उनकी कहानी नाट्य रूपांतर हुआ था और वो जा न सकी। गृहस्थी नाम की कहानी थी उनकी जो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में प्रथम आई थी, उसी पर रेडियो का नाटक बना और वो नाटक जाने कितनी बार खेला गया। मैंने ही अनुवाद किया था जब मैं एमए में आई तो मैंने डॉक्टर फॉस्टस मार्लो का जो प्ले है दिल्ली स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ, वो बहुत सुना गया। आप समझो उस समय आकाशवाणी एक गढ़ था कि जो भी अच्छी रचना है तो सबसे पहले सोचते थे इसको रेडियो को दे दे।
1: बहुत सारे श्रोताओं को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि साहित्यकारों को भी आकाशवाणी में ऑडिशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। वरिष्ठ साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्ला एक ऐसा ही अनुभव साझा करते हुए कहते हैं,
4: आकाशवाणी से संबंध बना तब मुझे लगा कि ये तो केवल गाने तक सीमित नहीं है भाई, और केवल समाचार तक सीमित नहीं है, और सामान्य जनता जो है वो गानों पर, लोकगीतों के बड़ी बहार थी सर, इसमें साहित्य भी कहीं

0: दोस्त आए तो हमें पता ही नहीं था। ये तो सब पता चला जब पहली बार मुझे ही जब पहली बार बुलाया गया। ये बात मैं कर रहा हूँ 74 से 80 के बीच का कोई सन रहा होगा कि जबकि बनारस में रेडियो स्टेशन खुला। अच्छा रेडियो में तो ये भी था कि समय के आधार पर उतने समय में वो समाप्त हो जाए। मेरी कहानी पहुंची जब वहाँ तो डायरेक्टर साहब ने मुझे बुलवाया। इसमें फिर ऑडिशन होता है। कहानी हमारी उनके पास थी, कहा कि इसको कुछ नहीं करना, पढ़ना है आप और इतने मिनट में इसको खत्म करना है। तो पता चला हर तीसरे महीने में बुलाया जाने लगा वहाँ। तो कभी कविता पाठ, तो कभी कहानी पाठ, कभी वार्ता के लिए कोई विषय दे दिया, कभी कोई बड़ी हस्ती पहुंच गए तो कहते थे साहब इंटरव्यू आप ले लीजिए। इसके बाद तो फिर साहब फिर वो इतने प्रसारण शुरू हो गए और मुझे यह देखकर वाकई प्रसन्नता हो रही है कि वो आज भी जारी है। जबकि जैसा कि लोग कहते हैं कि अब तो आ गया मोबाइल का युग, लेकिन इसके बावजूद भी आकाशवाणी न केवल सक्रिय है बल्कि अभी भूमिका को अदा कर रहा है और आज भी साहित्य को महत्व उतना ही दे रहा है। आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है क्योंकि हम इसका भाग रहे हैं, हिस्सा रहे, अंग रहे हैं।
1: आकाशवाणी के जरिए साहित्य सिर्फ महानगरीय हिंदी तक सीमित नहीं रहा। आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों ने भारतीयता के असली रंग बिखेरे। जालंधर से हीर रांझा की गूंज हो, कोलकाता से टैगोर की रचनाएं या चेन्नई से संगम साहित्य की चर्चा, आकाशवाणी ने भारत को एक सूत्र में पिरोया।
2: आकाशवाणी का ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन सर्व भाषा कवि सम्मेलन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास रहा है जिसका प्रसारण 1956 से होता आया है और यह सिलसिला आज भी जारी है। आकाशवाणी सर्व भाषा कवि सम्मेलन का हिस्सा रहे वरिष्ठ साहित्यकार और कवि अब्दुल बिस्मिल्ला अपने अनुभवों को कुछ यूं साझा करते हैं।
0: 26 जनवरी जो होती है उस पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन यह आकाशवाणी कराता था, हमको इसकी जानकारी थी नहीं। तो जो कविता हमारी चुनी गई थी वो कविता हमें भेजी गई और हमसे कहा गया कि आप इसका अंग्रेजी अनुवाद, तो अंग्रेजी अनुवाद जरूरी होता है क्योंकि वो अंग्रेजी से फिर वो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होता है, यानी हर भाषा की कविता का हर भाषा में अनुवाद होता है।
2: उत्तर पूर्व से लेकर पूरे देश तक आवाजों को जोड़ने वाला सेतु रहा आकाशवाणी। कवि और नाटककार राजीव कुमार फुकन के अनुभव इसे और खास बनाते हैं।
3: बचपन से ही रेडियो पर प्रसारित होने वाली कविताएं, नाटकों और साहित्य के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता गया। लेखन के दौरान रेडियो पर प्रसारित होने वाली नाटक, उनकी कहानियां और पात्र मेरे मन में बसे रहती है। अखिल भारतीय रेडियो के कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित होता है। जब मेरी कविताएं या नाटक अखिल भारतीय रेडियो पर प्रसारित होते हैं तो मुझे उनका जीवंत रूप दिखाई देते हैं। जीवन के हर क्षेत्र के लोगों का आकाशवाणी से गहरा जुड़ाव रहा है और यह आज भी कायम है।
2: सिर्फ कविता कहानी ही नहीं, हवा महल और झलकी जैसे कार्यक्रमों ने कहानी कहने की कला को पुनर्जीवित किया। रेडियो नाटकों ने अंधा युग और आषाढ़ का एक दिन जैसे कालजयी नाटकों को उस व्यक्ति तक पहुंचाया जिसने कभी थिएटर नहीं देखा था।
1: और इन सब से लोगों में पढ़ने की ललक जगी। रेडियो पर सुनी गई कहानियों ने पुस्तकालयों की कतारें लंबी कर दी। आकाशवाणी सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि एक ऐसी पाठशाला रही जहां कलाकारों को तराशा गया।
2: नाटकों के माध्यम से अपना करियर शुरू करने वाले और बाद में टीवी और फिल्मों में लोकप्रिय अभिनेता बने राजीव वर्मा अपने शुरुआती दिनों को कुछ यूं याद करते हैं।
4: पहले तो मैं आकाशवाणी को ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसने मेरे रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा के जो मेरा एक लंबा अरसा रहा है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान मैं आकाशवाणी का मानता हूँ। आकाशवाणी ने मेरी आवाज को, मेरे तलफ्फुज़ को, उच्चारण को और मेरी जो एक अभिव्यक्ति की जो एक कला

0: उसको जो परिमार्जन किया है आकाशवाणी ने ही किया है। आकाशवाणी से मेरा संबंध मुझे लगता है कि 1967 से है। 67 में मैं यहाँ ऑडिशन दिया था और उसके साथ फिर युवावाणी में भी मैं काफी काम किया हूँ कि एक कैजुअल अनाउंसर की तरह। तो ये मैं ये समझता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत जीवन की और मेरे व्यक्तित्व के निर्माण और परिमार्जन की सबसे बड़ी जो शिक्षा मुझे मिली है वो आकाशवाणी से मिली है। और उस समय यानी हम लोगों को शहर में और कहीं भी अगर जाते थे तो आकाशवाणी के कलाकार के नाम से जाना जाता था। मुझे ये सौभाग्य रहा कि मैं कुछ साल दिल्ली में भी रहा, कुछ साल बल्कि काफी साल मैं 4-5 साल इंदौर में रहा और बंबई में तो 30-35 साल गुजारे। मैंने सारी जगह मैं आकाशवाणी विविध भारती से कनेक्टेड रहा और लगातार मैं वहां जाता रहा। तो ये नशा जो है ये खत्म नहीं हो सकता, श्रोताओं के दिमाग से भी ये सबसे बड़ी बात है।
1: एक दौर था जब शास्त्रीय संगीत महफिलों तक सीमित था, लेकिन आकाशवाणी ने इसे आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के माध्यम से वैश्विक पहचान दी। खजुराहो हो या कोणार्क, हर बड़े उत्सव की गूंज आकाशवाणी के माध्यम से करोड़ों कानों तक पहुंची।

0: प्रख्यात ध्रुपद कलाकार पद्मश्री उमाकांत गुंदेचा बताते हैं,
1: मैं और मेरा छोटा भाई रमाकांत, हम दोनों भाई जो हैं वो 1985 में जो है हमने पहला ऑडिशन दिया था और उस समय हमें सीधा बी हाई ग्रेड मिला था। उस समय बी हाई एकदम डायरेक्ट आना बहुत बड़ी बात होती, ये हम लोगों की भी खुशकिस्मती रही कि फिर कहीं हम लोग गए नहीं, यानी यहाँ इस आकाशवाणी से शुरुआत किया और अभी तक हम इसी आकाशवाणी से यानी आकाशवाणी भोपाल से हम लोग जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी का अपना जो स्टाफ कलाकार स्टाफ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा योगदान आकाशवाणी का रहा है कि जो अच्छे अच्छे कलाकार जिन्होंने रेडियो आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दी हैं और सेवाएं दे करके जो है उन्होंने अपना घर भी चलाया है, उस तरीके से उनकी कला को भी एक बल मिला है। तो मैं समझता हूं कि आकाशवाणी का प्रसारण होने वाला कार्यक्रम है ये तो अपनी जगह है, लेकिन वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कलाकार समाज को इकट्ठा करके कलाकारों को जो है यहाँ पर रखा।
0: भारत के महान शास्त्रीय गायक या गायिकाएं चाहे ध्रुपद हो, खयाल हो या ठुमरी, हर कलाकार की एक ही चाह, आकाशवाणी का ग्रेड। आकाशवाणी का ग्रेडेशन सिस्टम केवल एक प्रमाण पत्र नहीं बल्कि कलाकार के लिए सम्मान की सबसे बड़ी मुहर बन गया। ए ग्रेड या टॉप ग्रेड कलाकार होना भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक तपस्या की सिद्धि जैसा माना जाता है। उस्ताद अमजद अली खान,
2: ऑल इंडिया रेडियो का बहुत पुराना संबंध है मेरा। मैं बहुत छोटा था, अपने पिताजी के साथ ग्वालियर से आता था यहाँ। उस वक़्त पिताजी को टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे वो, ऑल इंडिया रेडियो के 150 रुपया मिलता था। अर्ली 60s की बात है, दैट वॉज द हाइएस्ट फी ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, टॉप ग्रेड म्यूजिशंस।

0: दिल्ली के भव्य स्टूडियो से दूर आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों ने भारत के असली हृदय यानी लोक संस्कृति को जीवित रखा। आकाशवाणी के लोक संगीत कार्यक्रमों ने ये साबित किया कि भारत केवल राज्यों का समूह नहीं बल्कि लोक संस्कृतियों का एक अटूट सूत्र है।
1: गुणवत्ता को सर्वोपरि रखते हुए हर तरह के कार्यक्रमों को जगह देना, हर वर्ग के श्रोताओं को अपने साथ जोड़ना आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत रही है। पद्मश्री से सम्मानित गायिका मालिनी अवस्थी कहती हैं,
2: 2:30 बजे लोक संगीत

0: का कार्यक्रम प्रतिदिन आकाशवाणी से होता था। अब वक्त बदल गया होगा शायद, वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए। अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी, वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं। लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहाँ के पारंपरिक लोक कलाकार, उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे और मुरारी लाल जी को भी सुनते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते थे। एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता, सुबह 7:15 बजे दिल्ली आकाशवाणी से होता था, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उस फिल्म में के स्वर आरो अवरो पकड़ो फिर एक वो। बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा, सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासीय संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था। मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था।
1: कुछ ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने इतिहास रचा, वंदना के भक्ति स्वर हूँ, विविध भारती का रंगारंग सफर, संगीत सरिता, संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम, रेडियो रूपक या फिर रेडियो नाटक, इन कार्यक्रमों ने कला और संस्कृति को आम आदमी की भाषा में पिरोया। शास्त्रीय संगीत और खासकर कर्नाटक म्यूजिक को गरिमा प्रदान करने में आकाशवाणी ने महती भूमिका निभाई है। भारत के कई आकाशवाणी केंद्रों में बतौर प्रशासक और प्रसारक जुड़े रहे डॉक्टर वागीश शास्त्री, जो अपने आप में बड़े संगीतज्ञ रहे, उनके अनुभव किसी दस्तावेज से कम नहीं है।
2: मुझे बड़े बड़े कलाकारों से मिलने का मौका जरूर मिला, रविशंकर जी, विजय राघव राव जी, हाफिज अहमद खान साहब, सुमति मुटाटकर जी, कर्नाटक म्यूजिक में डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णा, शमंगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, जी एन बाल सुब्रमण्यम, श्रीरंगम गोपाल रत्नम, संध्या वंदनम श्रीनिवास राव, टी के गोविंद राव, यमिनी शंकर शास्त्री, महान कलाकार आकाशवाणी के साथ जुड़े थे। ये तन वाद्य वृंदा भी एक हिंदुस्तानी यूनिट दिल्ली में और चेन्नई में एक कर्नाटिक यूनिट साउथ इंडियन म्यूजिक बेस करके, तो उसमें पूर्ण चंद्र राव, कामा शास्त्री, यमिनी शास्त्री, शंकर शास्त्री, ऐसे लोग उधर काम किया। दिल्ली में सचदेव पवार जी जैसे लोग भी, उसका कंडक्टर जैसे काम किया, और बहुत सारे गेस्ट कंडक्टर्स जैसे पंडित रविशंकर जी, वायलिन विद्वान लालगुड़ी जयरामन, टीवी गोपाल कृष्ण जी, बहुत सारे लोग आके मध्य वृंदा में नया नया रचना कंपोज करके, तो हर प्रकार से आकाशवाणी का शास्त्रीय संगीत कर्नाटिक हिंदुस्तानी दोनों सिस्टम का कायम रखने के लिए बहुत प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है।

0: song.
1: Hello there, listeners. Welcome to the magical world of music.
0: Those were such happy times and not so long ago.
1: Come, dream away in a session of Western music where we try to dream a rainbow to every cloud.
0: But they're back again, just like a long lost friend.
2: आकाशवाणी ने जहां भारतीय संगीत की परंपराओं को सहेजा, वहीं पाश्चात्य संगीत के श्रोताओं के लिए भी हमेशा कुछ नया, कुछ अनूठा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यही वजह रही कि एक समर्पित श्रोता वर्ग आकाशवाणी के पाश्चात्य संगीत कार्यक्रमों को सराहता आया है। इन्हीं प्रयासों की कहानी वरिष्ठ प्रसारक और आकाशवाणी की पाश्चात्य संगीत इकाई से जुड़े रहे मनोज माइनकर अपने अनुभवों के जरिए कुछ यूं साझा करते हैं।
3: न सिर्फ भारतीय कला संस्कृति बल्कि विश्व की कई विधाओं को भी आकाशवाणी ने अपने श्रोताओं तक पहुंचाया है सुलभ अंदाज में। आकाशवाणी में पाश्चात्य संगीत जैसे विधा से मेरा संबंध लगभग 37 वर्षों का रहा है। मेरे कार्यकाल के दौरान 1989 में जब मैंने ज्वाइन किया था आकाशवाणी, मैं उन लोगों

के भी संपर्क में आया जिन्होंने मुझसे पहले शायद 37 या 37 से ज्यादा समय इसी क्षेत्र में बिताए थे। आकाशवाणी के पास वेस्टर्न म्यूजिक की जितनी वैरायटी, जितनी विधाएं, जितनी उपविधाएं रही हैं और हैं, उतनी संभवतः किसी अन्य चैनल पर आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। अच्छा, बात सिर्फ वेस्टर्न क्लासिकल की नहीं है, वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत सारी विधाएं हैं और आकाशवाणी पॉप से लेकर रॉक, फिर रॉक की उपविधाएं, जैज, कंट्री, डिवोशनल, वर्ल्ड म्यूजिक, न जाने कितने तरह का संगीत अपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करता था। कुछ कार्यक्रम ऐसे थे, अ डेट विथ यू, फोर्सेस रिक्वेस्ट्स, या युवाणी चैनल पर संडे रिक्वेस्ट्स, और प्रस्तुतिकरण का अंदाज, एक इनफॉर्मल स्टाइल जो होता है, वो एफएम के आने से पहले भी रहा है पाश्चात्य संगीत अनुभाग के कार्यक्रमों में। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो सार हमारे पूरी कार्यप्रणाली में निहित है, हमारा जो वेस्टर्न म्यूजिक का बुके रहा है, वो उसका एक बहुत ही खूबसूरत एक सिंबल है, एक सूचक है। ये प्रवाह थमने वाला नहीं है।

0: इंडी पॉप जैसी विधा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली आवाज उषा उथुप के लिए आकाशवाणी एक गाइड, साथी और प्रेरणा रहा है।
1: हमारे दिनों में तो आकाशवाणी सुनती थी, ऑल इंडिया रेडियो, इसी से मैं बड़ी हुई हूँ। मैं तो हमेशा से कहती आ रही हूँ दैट रेडियो इज माय कंपेनियन, माय इंस्पिरेशन, माय गाइड, माय एवरीथिंग। अगर रेडियो ना होता तो इट वुड बी इम्पॉसिबल। द रेडियो इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम इन द होल वर्ल्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट वी हैव ऑल इंडिया रेडियो। हमारी फेवरेट प्रोग्राम थी मधुर गीतम, जिसमें सारे लैंग्वेजेस होते थे, मलयालम, तेलुगु, फिर कन्नड़ा, तमिल, सब होता था। तो इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट एंड फौजी भाइयों की फरमाइश, दैट वाज माय फेवरेट प्रोग्राम।
2: फिल्मों और फिल्मी गानों को हिट कराने में भी आकाशवाणी का कोई सानी नहीं रहा है। वरिष्ठ फिल्म निर्माता और निर्देशक केसी बुकाड़िया बीते दौर को कुछ यूं याद करते हैं।
3: आकाशवाणी ने हमेशा हम लोगों के गाने बजाए, उन गानों के माध्यम से, इनके माध्यम से गाने लोगों तक पहुंचते रहे, गाने हिट हुए और हिट होने की वजह से फिर लोग पब्लिक सिनेमा हॉल में आते थे। तो आपका बहुत योगदान फिल्म इंडस्ट्री में रहा है और आपको मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: क्या आपने कभी रंगों को सुना है या कभी पत्थर पर चलती छेनी की संगीतबद्ध टंकार को महसूस किया है? आकाशवाणी ने इस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। अचरज की बात है कि एक ऐसा माध्यम जो केवल सुनाई देता है, उसने चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला को भी करोड़ों लोगों की कल्पनाओं में जीवंत कर दिया।
4: The builders of a great empire needed to establish their authority on Indian soil, to make their presence seen and felt. This is how they did it, through architecture, to leave a mark on Indian skies.
2: अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र हों या आधुनिक शिल्पकार रामकिंकर बैज की विशाल प्रतिमाएं, आकाशवाणी के रेडियो फीचर ने इन मूक कलाकृतियों को भी जबान दी।
0: आकाशवाणी के आर्काइव्स आज दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संपत्तियों में से एक हैं। महात्मा गांधी की आवाज हो या महान संगीत साधकों की दुर्लभ धरोहर, यहाँ इतिहास सांस लेता है।
2: चाहे वो बंगाल का बाउल हो, झारखंड का झुमेर, छत्तीसगढ़ की पंडवानी या दक्षिण भारत की यक्षगान शैली, आकाशवाणी ने इन विलुप्त होती कलाओं को न केवल मंच दिया बल्कि उन्हें रिकॉर्ड कर भविष्य के लिए सुरक्षित भी किया। लेखक

0: कवि और अभिनेता के साथ साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव, कार्यकारी और अकादमिक प्रमुख सच्चिदानंद जोशी कहते हैं,
1: हम सब जानते हैं कि लोक संगीत अलग अलग क्षेत्रों में होता है, लेकिन अगर उसे व्यापकता देने का कहीं काम किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है। बुंदेली लोकगीत कौन सा हो, बघेली लोकगीत कौन सा हो, निमाड़ी लोकगीत कौन सा हो, मालवी लोकगीत कौन सा हो, वो सब लोकप्रिय कराने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो दूरस्थ अंचल है वहाँ पर जाने वाला माध्यम आकाशवाणी ही है, तो चाहे वहाँ पर उनकी संस्कृति को पहुँचाने का काम हो, चाहे बाहर की कोई और संस्कृति की झलक उस क्षेत्र में पहुँचा।

0: लोकप्रिय कराने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो दूरस्थ अंचल है वहाँ पर जाने वाला माध्यम आकाशवाणी ही है, तो चाहे वहाँ पर उनकी उनकी संस्कृति को पहुँचाने का काम हो, चाहे बाहर की कोई और संस्कृति की झलक उस क्षेत्र में पहुँचाने का काम हो, तो दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर आकाशवाणी की पहुँच है। भारत की पूरी लोक गीतों की परंपरा का ये संभवतः विश्व में सबसे बड़ा आर्काइव होगा, और उसमें भारत के हर प्रांत की तमाम जनजातियों के गीत संग्रहित हैं। आकाशवाणी का अपना बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूज़िक का भी बहुत अच्छा आर्काइव है, थिएटर का, नाटकों का तो निश्चित तौर पर है ही आर्काइव, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और देश के, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मूर्धन्य साहित्यकार होगा जो आकाशवाणी पर नहीं आया होगा, निश्चित तौर पर उस समय तो आए ही हैं। तो ये इतना बड़ा काम, सहेजने का काम आकाशवाणी करता है।
1: जाने माने साहित्यकार, व्यंगकार और पत्रकार यशवंत व्यास साहित्य और संस्कृति के नजरिए से आकाशवाणी को एक समृद्ध खजाना मानते हैं।
2: आकाशवाणी एक ऐसी बूंद है जो मन पर गिरते ही यादों को जिंदा कर देती है। कितनी ही विलक्षण आवाजें इसकी दुनिया में सुरक्षित हैं, शब्द, गीत, संवाद, संगीत, सुबह उठने की धुन और रात के आखिरी गीत। वे दिन थे जब युवाणी में कविता सुनाकर आदमी मशहूर हुआ जाता था। नाटक और खबरों की पहली और आखिरी पनाहगाह थी रेडियो की वो फ्रीक्वेंसी। अभी भी वो खजाना है, अभी भी वो सबब है तमाम शोर शराबे के बीच यादों के उजाले का। आकाशवाणी अभी भी अपने साथ रहती है उसी तरीके से।
3: शब्दों और आवाजों की इस विरासत ने पीढ़ियों को जोड़ा है, संस्कृतियों को सवारा है और प्रतिभाओं को पहचान दी है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि भारत की आत्मा की गूंज है। सुनते रहिए आकाशवाणी।
4: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में तीन कड़ियों की श्रृंखला में दूसरा रूपक, साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति। आकाशवाणी, आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर आनंद श्रीवास्तव और नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी संग्रहालय,
5: आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय। प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज प्रस्तुत है नीरज मिश्र का सितार वादन। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक नीरज मिश्र बनारस घराने की सुदीर्घ समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में उनका प्रवेश मात्र 5 वर्ष की अवस्था में हुआ, जब उन्होंने अपने पिता और गुरु सुप्रसिद्ध सितार वादक अमरनाथ मिश्र से सितार वादन की विधिवत शिक्षा आरंभ की। गहन प्रशिक्षण के पश्चात नीरज मिश्र ने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सितार में स्नातकोत्तर और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एमफिल की डिग्री हासिल की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार नीरज मिश्र ने देश विदेश में अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें संकट मोचन संगीत समारोह, गंगा महोत्सव, ताज महोत्सव, कबीरा महोत्सव, ICCR संगीत समारोह प्रमुख हैं। उन्होंने यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में भी सितार वादन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी हैं, जिनमें इटली, स्विट्जरलैंड और फ्रांस शामिल हैं। आज के कार्यक्रम में आपके साथ

0: आपने सुना राग दरबारी। नीरज मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री में सितार वादन। विलंबित मसीद खानी गत 3 ताल में, मध्य लय 1 ताल में और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग दरबारी। नीरज मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग बागेश्री। विलंबित मसीद खानी गत इज इन 3 ताल, मध्य लय is in ek taal and drut gat is set to 3 taal.

0: राग बागेश्री के पश्चात नीरज मिश्र आज अपने कार्यक्रम का समापन सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र भैरवी में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग बागेश्री, नीरज मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र भैरवी।

0: आप सुन रहे थे सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र भैरवी में धुन। कलाकार थे नीरज मिश्र। आज के रविवासरीय संगीत सभा में आपके साथ तबले पर संगति की देव नारायण मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र भैरवी प्लेड ऑन सितार बाय नीरज मिश्रा इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Accompanying him on tabla was Dev Narayan Mishra. Recorded earlier at Akashvani Varanasi, this program came to you from Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर

0: दिल्ली से आई वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरल में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी दोस्तों बिल्कुल बिट्टू मंगिया गया। देखो ना बिट्टू भाजी अज आणगे तो जरूर जिहड़ी पार्टी है वह भी देणगे, क्योंकि सब दोस्तों ने अपने अपने शगनां दे लिफाफे तैयार कर ले होने हैं। और बिट्टू भाजी ते अज फिर मंगे गए ने दोबारा तो, ते सब दोस्त बिल्कुल तैयार ने ना जी पार्टी दे लई। ते मैनूं उम्मीद है कि अज सारे दोस्त पार्टी भी मंगणगे ते उहनां लई शगन दा लिफाफा भी तैयार रखणगे। लो जी कॉलर आ गए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? क्या बात है खिंडा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। खिंडा साहब तुसी अज फिरोजपुर तो बोल रहे हो, ते कटाई वगैरह हो गई सारी? कणका संभाल के मंडी च भेज दित्तियां? चलो ये तो बहुत अच्छी गल है। ते बारिश तो पहला पहला सारा काम हो गया, पेंदियां कणकां अज माड़ी मोटी हो रही है कि ड्रिजलिंग के नहीं जी? कणी कणी पेंदी छोटी छोटी है। चलो जलंधर तो सवेरे सवेरे पै गया, थोड़े हुण पै रहा। अज फिर कि फरमाइश लेके आए हो? सिली सिली आंदी हवा, बिल्कुल सुनावांगे जी तुहानूं तुहाडी फरमाइश ते। हंसराज हंस दा गाया होया गीत तुहाडे रेडियो सेट ते आ रहा। शुक्रिया जी कॉल करन दे लई,
1: धन्यवाद।
0: ओके जी।

0: सर एकदम आपका भी सर, आप मेरा फोन अटेंड कर लिए सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हंसना चाहिए, और हंसने में सर बिंदास रहता है इंसान सर।
1: हाँ बिल्कुल, देखिए जितना आप हंसेंगे ना उतना ही आपका जो ब्लड है, खून है, वो बढ़ता है।
0: ये सर कभी भी ना इंसान से है ना कभी भी बात करना चाहिए, हंस के बात करना चाहिए। कोई भी हंस के बात करता है सर बिंदास आता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता सर। आज है और मेरा अंकल है जो ज्ञान सिंह पिंडा है, उसके कोई भी फरमाइश से आप है ना कोई भी कम सुना दीजिए सर।
1: अरे क्या बात है, मतलब खिंडा जी, खिंडा जी के लिए कोई भी गीत सुना दें हम।
0: सर कोई भी सुन रहा, मेरा अंकल है और मेरा उस समय मेरा उम्र उस समय 10 साल था।
1: अच्छा,
0: मैं और अभी मेरा उम्र 47 साल है सर।
1: वाह वाह वाह, इसका मतलब ये है कि आप 37 साल से अपना खिंडा जी के साथ।
0: मैं क्या बताऊँ, ये मेरा अंकल है, ये ना अपना है ना पहले बलवीर अंकल है ना, आपको मालूम बलवीर अंकल, ये एक कपूरथला से।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: मैं उसमें मेरा उम्र है, उसमें मेरा उम्र 11 साल था।
1: तो आपका तो बहुत सारा दोस्तों के साथ जो है वो मित्रता रही है। तो ये हमारे लिसनर्स रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, खिंडा जी का तो अभी फोन आया था संतोष जी, तो इन सबके लिए गीत कौन सा सुनाएं आज
0: आप है ना, जो कोई भी सॉन्ग सुना दो जो मेरा अंकल का और जो सभी को जो पसंद आए,
1: सबको पसंद आएगा,
0: ये आपका कोई भी फरमाइश अच्छा लगेगा
1: जी। सुनाते हैं संतोष जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए।
0: आएंगे सर।
1: ओके जी, ओके ओके ओके।

0: अगले कॉलर वाल। हेलो
1: हेलो, नमस्कार श्यामा जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: श्री गुरु रविदास नगर मलोह तो फकीर चंद रसगनिया जी।
0: जी जी फकीर चंद रसगनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: टोटली बहुत बहुत थैंक यू जी।
0: अज रसगनिया जी देखो शुरुआत हुई सी, यशपाल जी ने की थी सी, बिट्टू मंगया गया।
1: हाँ जी, असी तां शगन दा कार्ड भेजता जी,
0: भेज दे
1: बिट्टू जी, दसणगे सानू पहुंचा कि नहीं पहुंचा।
0: ओ क्या बात है, तुसी तां बड़ी फुर्ती मारी है।
1: बिट्टू जी को पार्टी भी लवांगे हुण।
0: लो जी बिट्टू भाजी, बिट्टू भाजी मंगे गए ने ते फिर पार्टी तां बणदी है, ते तुसी शगन भी भेज दित्ता।
1: देखो करू दिंदे आ पार्टी।
0: हाँ बिलकुल देणगे जी।
1: जिवें श्याम शर्मा जी, जिवें आपां खुशी दे विच गमी भी आ जांदी हुंदी आ जी।
0: आ जांदी है जी। ये देखो
1: जगतपुर दे विच मां बेटी दी, मतलब तुसी सुणिया ही होणा, हां जी, किन्नी दुखदाई खबर होई है। हां जी, मैं यही दोस्तां नूं कहूंगा, जे तुसी किधरे जाणदे हो, बेड़ी बूड़ी च बैठे हो, तां आपदियां मतलब बेल्टां बूल्टां बन्ह के रखो जी। हां जी, जैकटां जूटां पा के रखो। ते वेखो जी शर्मा जी, जे उहनां ने कोई मतलब लेडीज ते बच्चे ने जे जाकट जूट पाई होंदी तां शायद बचा हो भी सकदा।
0: बिलकुल हो सकदा सीगा जी। और ये उही कहंदे ना कि जे असीं अपने आप नूं थोड़ा जिहा ख्याल करिए, और जिहड़े इस किते दे विच लगे हुए ने उहनां नूं भी इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि जैकट, लाइफ जैकट जिहड़ियां है वह पा के ही अगर आपां बोटिंग करिए तो ज़्यादा वधिया। तो बहुत घटना माड़ी हुई है, सानू सारयां नूं बहुत दुख है। परमात्मा उहनां दी आत्मा नूं शांति बख्शे, असीं यही दुआ करने हैं। ते अज फिर गीत किहड़ा तुसीं लै के आए हो?
1: ਗੀਤ ਅੱਜ ਆਟੇ ਦੀ ਖਿੜੀ ਸੁਣਾ ਦੋ ਜੀ, ਸ਼ੇਰੀ ਮਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ
0: ਗੱਲਾਂ
1: ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
0: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਠੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਰਸਗਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਸਗਨੀਆ ਜੀ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।
0: ਓਕੇ ਜੀ।

0: जी दोस्तों, बिल्कुल सही कहा जी कि ये जड़ी माता है ना, इस दियां हर चीजा याद आदियां ने, चाहे वो आटा गुणदी होवे, चाहे तुहानू प्यार दे नाल रोटी खवांदी होवे। और जदों तुसी छोटे छोटे हुंदे सी, किवें तुहाडे प्यार दे नाल तुहाडे मूंह दे विच जिहड़े छोटे छोटे निवाले वो तुहाडे मूंह च दिंदे हुंदी सी, लेकिन जदों माता जी नूं लोड़ पैंदी है कि जदों तुसी वड्डे हो जाने हो ते माता जी बुजुर्ग हो जाते हैं, उदों तुसी माता जी का किन्ना ख्याल रखते हो, ये एक बहुत ही सोचण वाली गल है। जे तुसी माता जी पिता जी की सेवा करते हो, यानी कि फिर तो समझ लो तुहानू परमात्मा नूं भी तुसी पा लिया, परमात्मा की भी सेवा कर ली। मदर्स डे भी आने वाला है, इस करके तुसी सारिया ने माता जी की जिन्नी ज़्यादा सेवा कर सको उन्नी घट है। लो जी कॉलर आ गए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो,
1: हेलो
0: स्वागत है जी प्रोग्राम च, कौन बोल रहे हो?
1: प्रीतम
0: जी, प्रीतम जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: दोबारा
0: हाँ देख लो बिट्टू, फिर मंगया गया जी, देख लो बिट्टू भाजी हटदे नहीं। ये भी देखो ना, अपने हरेक का दम नहीं होंगे बार बार मंगना ये भी
1: अपने आज आवाज सुनदा ਲੱਡੂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰੋਸੇ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ।
0: हाँ बिल्कुल जी, बिट्टू भाजी ने पार्टी रख लेनी है, क्योंकि वह तो हमेशा कहते हैं मैं पार्टी देने नूं तैयार हाँ, तुसी आ जाओ सारे जाने फटाफट।
1: हाँ तो उन्हां दी खुशी दे विच ना इक गीत सुनाउणा है, हरचरण ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੋਰੀ ਹੈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ।
0: ਹਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੋਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਅੱਜ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਲਓ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम सौगात चल रहा है और सौगात प्रोग्राम से तुसी भी आ सकते हो। आने का रास्ता बिल्कुल सिंपल है तो सौखा है। 0181-2342-171 नंबर डायल करना है तो पहुँच जाना जी अपने प्रोग्राम सौगात के विच, जिथे तुहाड़ा दोस्त शाम शर्मा उड़ीक कर रहा है तुहाडे सारे दोस्तों की। जिथे तक साडी आवाज़ जा रही है 1 बजे तक प्रोग्राम जारी रहेगा और तुसी इस प्रोग्राम च अपने पंजाबी गीतों की फरमाइश कर सकते हो और पा सकते हो सांझ सारे दोस्तों के नाल अपनी आवाज़ के राही। लो जी कॉलर आए नहीं, देखिए जी कि दोस्त ने। हैलो
1: हैलो सत श्रीकाल सर जी।
0: जी सत श्रीकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: सर जी मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़ तो।
0: राजू जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद सर जी थोड़ा भी।
0: राजू जी हुणी कोशिश की थी कि लगे सी पहला तो? फिर भी तुसी जल्दी हिम्मत हारी नहीं है, जल्दी साढ़े तक पहुंच गए। अज केड़ी फरमाइश लेके आए हो?
1: गुरदास मान दा गीत सुनना जी।
0: लो जी गुरदास मान दी आवाज दे विच गीत सुनाने हैं क्योंकि अज जोड़िया बन दया पे तो फिर जोड़िया का गीत सुना दें फिर राजू जी। हाँ बिलकुल सही गल है, ये जोड़िया इसे तरह बनिया रहन राजू जी।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: लो सुनानिया जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए जी।
1: धन्यवाद।

0: जी दोस्तों बिल्कुल, ये जड़ियाँ रब ने बनाइया जोड़ियां ना, ये आप ही रब पहले ही सोच लेंदा कि मैं जोड़ियां किवें किवें किदा किदा बनानी है, ते आपे फिर तुहानू मियां जी टक्कर जांदे ने और सुहाणी भी। और ये रब ने जदों जोड़ियां बना देनी है तो फिर आपां सोच नहीं सकदे भी रब ने किन्नियां सोहणियां सोहणियां जोड़ियां बना दिंदे ने। ते अज भी जोड़ी बनी हुई है, पर साडे को कॉलर आ गए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो, ओ नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। कौन दोस्त बोल रहे, पहला दसो तारुफ करवाओ। हाँ वाह जी वाह, बिट्टू जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। देखो थोड़े लिए तो फिर अज बिट्टू भाजी मंगे गए ने, पार्टियां ही पार्टियां हो गई अज दे।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, पार्टियां भी पहुंच गई मेरे को, रसगनिया भी पहुंच गया, प्रीतम भाजी भी आ गए, जस भाजी हर साल आंदे आ, ते आंदे देर बाद इन्हें मंगनी नहीं पाई,
0: देखो ना वो हुण तुहाडा मंगना ते करवा गए ने, ते अज मैनूं रसगनिया जी दस रहे सी, कहिंदे मैं ते शगन दा लिफाफा वी भेज छड्डिया। देखो तुहाडे कोल ये शगन दे लिफाफे आ रहे ने अज, धड़ा धड़ धड़ा धड़, ते तुसीं हुण पार्टी दा इक दिन इहनां नूं दस दिओ सारिआं नूं।
1: हां जी पार्टी सारे, हां जी सारी
0: सारे ही आन, बिल्कुल। हां देखो ना ये शगन दा दिन है, बिट्टू भाजी मंगे गए ने, ते पार्टी रखी गई है, ते तुसी सारे जाने पहुंचो।
1: परिवार
0: जी बिलकुल,
1: यश भाजी आंदे लेट रौनक ला जांदे आ,
0: रौनक लगा जांदे ने, ते अज देखो ना किदा रौनकां ला गए ने, ते वो कहंदे जी कि अज आपां गीत भी इदां दा सुनना कि बिट्टू भाजी जिहड़े है वो पार्टी देण, ते क्योंकि वो मंगे गए ने, ते अज फिर तुसीं किवें सारिआं नूं
1: दवांगे जी आपां,
0: अज सारिआं नूं तुसीं किदां नचा रहे हो।
1: बिल्कुल जी अज लावे फिर मनजीत आणगे जी साडी,
0: अच्छा
1: भी है ते मां भी साडी ते भाजी भी है,
0: अच्छा
1: गाना ला रहे सी नच लैण दे जोर दे ब्याह विच,
0: ओ क्या बात है जी, क्या बात है। बिल्कुल लो जी फिर अड्डी टप्पा तां सारा हो गया होना है, ते उम्मीद है जी जिन्हां ने हले अड्डी नहीं चक्की है वो भी अड्डी चक्कणगे ये गीत सुन के।
1: बिल्कुल जी
0: ते बिट्टू जी भाजी तुसी पार्टी रख लो तैयार, असीं सारे जणे नच्चण नूं हो गए तैयार।
1: ठीक है जी, ओके जी,
0: शुक्रिया जी कॉल दे लई।
1: ठीक है सारे, मुबारकां जी,
0: मुबारकां जी, मुबारकां।

0: जी, राम प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। हो
1: थैंक यू जी।
0: सुनाओ राम प्रसाद जी, आज फिर आनंद
1: बहुत
0: मान रहे हो?
1: वधिया गल है। पोता रख गनिया साहब दे आते मंगला ते बेचारे बिट्टू जी लगा आंदे किसे बुड्ढे बारे।
0: देखो गल इदा है, ये कोई उम्र की गल नहीं होंगी, ये तो एक गल इंसान दे ना अपने आप दी होंदी है कि इंसान कदों तक इस चीज नूं इंजॉय कर सकता है।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, तो इस करके आप ये नहीं कह सकते जी बिल्कुल रसगनिया साहब दे पोता होया ते इधर मंगना हो गया।
1: मैं तो कहना बेचारा उन्होंने सुखसा उन्होंने भी जो उन्होंने हम सफर आ गया ठीक ठाक रहन ते अपने एंजॉय करन लाइफ नु।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गल इदा है जी कि
1: समझ आ गई है वैसे।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो वो तो हाँ वो तो बिल्कुल जिदा तुसी किया इदा ही होणगे ते असी भी यही चाहने हैं, पर मंगना तो कहे दा भी हो सकता है। देखो बिट्टू भाजी कह गए नहीं, कहिंदे जी पार्टियां तैयार नहीं ते तुसी बस आने वाले बनो, पार्टी अपनी तैयार है ते हुण तुसी डेट दस देनी है, टाइम दस देना ते बिट्टू भाजी ने अपनी तैयारी कर लेनी है।
1: हां भावें अपनी शादी दी सालगिरह ते पार्टी कर लां।
0: आहो इक्को ही गल है। बिलकुल सही किया तुसी कि इसे तरह जोड़ियां जड़ियां है वो बनिया रहन
1: सलामत रहन। रब ने बनाईया जोड़ियां चिट्टे चोल जिन्होंने पुन कीते।
0: अज फिर तुसी केड़ी फरमाइश लेके आए हो?
1: मैं काका जम पिया।
0: खुशखबरी
1: आऊगी
0: लवोंगे जी। ते अज फिर तुसी अगे वधण लगे हो?
1: हां जी हां जी, अज रसगनिया साहब नूं पहले तुसी ते अपना फर्ज पूरा करो।
0: अच्छा राम प्रसाद जी,
1: थैंक यू जी, बहुत बहुत।
0: ओके जी।

0: जी दोस्तों, असीं तेरे शहर नूं सलाम कर चले हाँ। क्या बात है जी। गुरदास मान जी आवाज़ दी विधि सुन रहे सी गीत। तो दोस्तों तकरीबन तकरीबन 12:25 हो गए हैं, 35 मिनट का वक्त रह गया अज के सौगात प्रोग्राम का। जिन्हें दोस्तों ने हल तक कॉल नहीं की है जरूर कॉल करो 0181-2342-171 नंबर डायल करके अपने दोस्त शाम शर्मा के कोल पहुँच सकते हो। इस प्रोग्राम च तुसी अपनी हाजिरी जरूर लगवाओ, पंजाबी गीतों की फरमाइश करो। लो जी कॉलर आए ने, देखिए जी केड़े दोस्त आ गए ने। हैलो हैलो
1: हैलो,
0: हाँ जी बोलो जी।
1: सत
0: श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? वाह जी वाह, वाह जी वाह। मनजीत जी पहला तो स्वागत है प्रोग्राम च,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: देखो मैं तो यह सोच रहा सीगा कि मनजीत जी अपने दियोर दे व्याह च नचदे पए ने। फटाफट अपनी तैयारी कर लेनी क्योंकि बिट्टू भाजी का मंगना हो गया।
1: हाँ,
0: हाय क्या बात है,
1: तुसी
0: एडवांस ही तैयारियां कर छड़ियां जी। रौनक भी लगन गियां ते प्रोग्राम नूं होर वधिया बनावांगे आपां। हां हां पार्टी देखो हले तो मंगे गए ने, हले तो बाद व्याह भी करना गल सही है। जड़ा बार बार मंगन का गल ये होंगी है कि पक्का कर दिया कि हाँ जी मैं बाकी मंगिया गया, शक नहीं कोई भी है।
1: लोकां नूं बोलण दे।
0: हाय हाय।

0: क्या ही बात है जी, गल सही है।
1: दिल तो
0: ये लोग ने ना
1: सारे नाल लगा है, डेडिकेट
0: दिल तो सारे ने
1: गाना
0: लगे।
1: सारे नु।
0: हाँ जी, सब नु डेडिकेट है जी, सारे सुन लो, सारे नु डेडिकेट है। ये कदे कल्ले ना सुन लो कि कल्ले तुहाडे लई है, ये सारे लई है।
1: सारे नहीं है, बच्चों ले भी रसिया जी नाल बल्कि भी सब और भी
0: हाँ
1: सारे नु डेडिकेट।
0: लो जी, फिर सुनो जी ये गीत। शुक्रिया जी कॉल कर ली मनजीत जी।
1: थैंक यू जी, थैंक यू,
0: ओके जी।
1: धन्यवाद।

0: जी दोस्तों, उन्होंने आवाज दी आ जा आप आगे, क्योंकि प्रोग्राम सौगात चल रहा है जी। सौगात प्रोग्राम का तकरीबन वेला 14 मिनट का रह गया। जिन्हें दोस्तों ने हले तक सानू कॉल नहीं की है, जरूर कॉल करो। लो जी आवाज दी, कॉलर पहुंच गए। हैलो,
1: हेलो
0: स्वागत है जी प्रोग्राम च। कौन बोल रहे हो?
1: श्याम जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: देश राज ड्राइवर, तहसील टवाणा, जिला फतेहाबाद, हरियाणा तो।
0: जी जी देश राज जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: तुहाडा ही बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: बड़े दिनों बाद गेड़ा मारिया साडे विड़े।
1: सर जी गल इस तरह जी, मेरी माता जी बीमार ने जी, हॉस्पिटल च दाखिल ने जी, सार जिंदल हॉस्पिटल च। आज 12 दिन हो गए ने जी।
0: ओहो, ते हुण माता जी दा हाल किवें है, पहला ही दसो।
1: हाँ, तबीयत हुण तां बहुत ठीक है जी, सवेरे छुट्टी भी मिल जानी है जी।
0: लै क्या ही बात है जी, फिर तो साडी खुशी दा टिकाणा ही कोई नहीं है इस वेले।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ,
0: क्योंकि माता जी एकदम ठीक हो गए ते घर वापस आ रहे नहीं, इस तो वधिया होर गल केड़ी हो सकती है।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ।
0: चलो असि यही चाहने जी, माता जी एदां ही तंदरुस्तियां माता जी दियां रहण, ते तुसी माता जी दी सेवा एवें करदे रहो। अज केड़ी फरमाइश लेके आए हो?
1: मिस पूजा दा ला दो जी, मेरे दो नैन।
0: मेरे दो नैन, लो जी सुनाने हैं जी। शुक्रिया जी देसराज जी कॉल करने दे लई।

0: जी दोस्तों बिल्कुल इसी तरह जी मेरे दो नैन जड़े है इसी तरह चमकते रहन। प्रोग्राम सौगात का वेला रह गया बिल्कुल 10 मिनट का 9 मिनट का। जिन्हें दोस्तों ने हल तक कॉल नहीं की थी, जरूर कॉल करो। लो जी कॉलर आए नहीं। हेलो
1: हेलो सर जी
0: सत श्रीकाल जी, कौन बोल रहे हो जी? जी मनजीत मनी जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम। बिलकुल ठीक है जी, तुसी दसो सब राजी खुशी हो? अज फिर केड़ी फरमाइश लेके आए हो? जग जीवनियां दे मेले। गल तो सही है जी, सुनानी है जी। शुक्रिया कॉल करन दे लई। ओके जी।

जी दोस्तों, इस गीत के नाल ही अपने दोस्त शाम शर्मा नू आज दा प्रोग्राम खत्म करन दी दी दियो इजाजत। इसी तरह जी हसते रहो, वसते रहो, अपना ते अपने गुआंढियां दा रखना ध्यान, ते किसे नू भी नाराज नहीं करना, खेड़े मत्थे सब नू मिलना है। इसी वादे दे नाल मैं तुहाडे तों इजाजत मंगदा अपनियां दुआवां दे विच, अपने दोस्त शाम शर्मा नू हमेशा याद रखना। लो जी, दियो इजाजत, वंदे मातरम, जय हिंद।

मैं ताण दिबाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पे करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। इस इलाही फरमान विच उस अकाल पुरख नू समरथ बयान्या गया है, ते उसे नू ही सृष्टि दे जीवां दा आसरा बयान कीता गया है। इस करके समस्त जीव उस दे अग्गे ही अपनी विथ्या प्रगट करदे हन, ते उसे दे अग्गे बेनती जोदड़ी करदे ने, क्योंकि सबना दा साईं वो सच्चा अकाल पुरख है। प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं, तू रखवाला सदा सदा हो तुद ते आई। सरवण करदे हां भाई हरी सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साई, तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याई। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरी सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। प्रभु प्यारे जन उस अकाल पुरख दी ओट अते आसरा रखदे ने, निमरता दे घर विच उस दे दर ते ही टै पैंदे ने ते बेनती करदे ने। मेल लह दयाल टै पै द्वारिया, रख लेवा दीन दयाल प्रमत बहु हारिया। भाई गुरदास जी अनुसार निमाणा ही गुरमुख हुंदा है ते उही मनुख अकाल पुरख दी दरगाह विच माण प्राप्त करदा है। होए निमाणा टै पवै, दरगह माण निमाणा पावै, खसमै सोई पावदा, खसमै दा जिस पाणा पावै। भाई गुरदास जी की इस रचना का गायन कीता है भाई निर्मल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: होए निमाणा टै पवे, दरगह माण निमाणा पावे, खसमै सोई पावदा, खसमै दा जिस पाणा पावे। भाई गुरदास जी वालों उचारित 29वीं वार की इस 13वीं पौड़ी का गायन किया सी भाई निर्मल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। आओ सरवण करदे हां इस रचना की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसविंदर सिंह दर्दी।
1: ये मुबारक पौड़ी भाई साहब भाई गुरदास जी की रसना तो उचारण की हुई है। भाई साहब जी दियां वारां विच्चों 29वीं वार की 13वीं पौड़ी है। गुरबाणी विच बहुत वारी जिक्र आउंदा है गुरमुख अते मनमुख दा। गुरमुख कौन है? गुरमुख वो है जो अपना आपा गुरु अगे उस तो निशावर करता है अते जिंदगी विच जो भी कार विहार करता है उस विच सब तो पहला अपने गुरु नू अगे रखता है अते अंदर हमेशा इस गल दा पैर रखता है कि किते मेरे कोलों कोई ऐसा कर्म ना हो।

हम मैले तुम ऊजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूरख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भर गया साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड़ गए खात पड़ गए जेते बरस बरस पड़ गए जेते मास पड़ गए जेते यार जा पड़ गए जेते सास नानक लेखे एक गल हुर हो मैं चखना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहुती पवे ते तुलव्या बहु पे किया देही दुख दिया सौवे जी अपना किया आनना खाया साथ गवाया बहुत पाया दूजा पाया बस्तर ना पैरी एनस्कारी मोन भगुता क्यों जा कह गुबन सूता पाक पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूर खंदे पत गवाई विण नावे किश्थाए ना पाई रहे बिबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछताणी सात गुर भेटे सोसक पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस दिसे ते नहीं केवल हो मैं शब्द जलाए पौड़ी पग तेरे मन पहांग।

दान में हिंडा तली खाक दी मिले तमस्त कलाई है। कूड़ा लाज छड़ी है हो एक मन अलख ते आई है। फल ते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है। जे होवे पूर्व लिखिया ता तूर तिना दी पाई है। मत थोड़ी सेव गवाई है, मत थोड़ी सेव गवाई है।

सागल मनोरथ पूरी आशा, तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो।

गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर समिधार अहमेव निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाव न हुटे सतवंत हर नाम मंत्र नव निध न निखुटे।

0: सत संतोख धरियो और आदि पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक थुर प्रगट ज्योत जग मग तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा थेरे लाए चित सनमुख रहो कल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बेतरो
1: तेह जन जाचो जगतर पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यों परम अति

अंत न पावत देव सभै मन, इंद्र महाशिव जोग करे। हुन वेद बरंच विचार रहो, हर

दशमी प्रथम पगौती समरक गुरु नानक लैत्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौं श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जस डिठाय सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै कार नौ निद आवै ताय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह।

गुरु बोलो जे। पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठिया जपिया तपिया

गुरु बोलो जे। जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत शीस दते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया।

0: पहला
1: श्याम कहे स्तंभ स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको ससमावेर करे प्रभु राम नाम देवा में सू नायल प्रास्त जाए नानक तो मुखंत्र पाए जुज महजोर श्री चंद्रावल कान कर संजादम पया पार जात गोपी ले बिंद्रा बन में रंग किया कल मैं बीद अथर्बण हुआ नाउ खदाई लो पया नील बस्तर ले कपड़े पैरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हुए सचार पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ।